हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ए तो हाँ सारे ना अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी मैं तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे ये बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा।

महात्मा, तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं।
2: मानो या ना मानो तुम,

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इससे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान कमाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट। हर धड़कन अनमोल है, इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे। बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

0: काश्मीय भैया आए बारंबार, इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी,
1: तो क्या कहा आपने?
0: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019701. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इसे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान गंवाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट। हर धड़कन अनमोल है, इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे। बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी?

0: क्या रहे हो?
1: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको
0: है?
1: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
3: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। आप सभी जुड़े हुए हैं इस समय इस बहुत ही प्यारे से रेडियो सेट के साथ। जी दोस्तों, और आप सभी इस समय साथ ही साथ रेडियो के साथ साथ जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बहुत ही अच्छे से रख रहे हैं, क्योंकि सेहत अच्छी है तभी हमारी जिंदगी का हर पल अच्छा है। तो सेहत का ध्यान रखना तो बनता है। तो आज दोस्तों 7 मई 2026 की सुबह आप सभी की बहुत अच्छी रही है और अब दिन की शुरुआत और भी प्यारी होने वाली है, और भी खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। 9:03 हो गए हैं दोस्तों, 4 हो गए अभी, तो धीरे धीरे समय है ये तो इसी तरह से बढ़ता जाएगा और उम्र ढलती जाएगी और रिश्ते छूटते जाएंगे। रिश्तों में से लगाव क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि एक इंसान परवाह करते करते नहीं थकता और दूसरा इंसान उसकी कद्र नहीं करता, जिस कारण रिश्ते तो होते हैं लेकिन अपनापन धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। तो दोस्तों, जहाँ प्यार और अपनापन नहीं है उन रिश्तों को ज़्यादा लंबे समय तक हम टिका नहीं पाते, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाती है, सिर्फ एक दिखावा बन कर रह जाता है। तो आपको दिखावे के साथ नहीं रियलिटी के साथ जीना है। तो दोस्तों, ये सफ़र बहुत ही प्यारा सा रहने वाला है आप सभी के लिए 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का, और साथ ही साथ काम भी कीजिए और एंजॉय भी कीजिए रुचिका की बातों को और खास करके प्यारे प्यारे से गीत। तो आइए मनोरंजन की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में इस प्यारे से गीत के साथ, क्योंकि गीत संगीत हमारी जिंदगी का एक बहुत ही सुकून भरा पल है।

दोस्तों, हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया सोनू निगम की आवाज में। और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की आवाज के साथ। तो आइए इसी प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और रुक करते हैं मौसम की ओर, क्योंकि इस समय मौसम जो है ना हमारे लिए बेहद जरूरी है, मौसम की अपडेट। क्योंकि धर्मशाला की हम बात करें तो इस समय धर्मशाला में एक तो चुनावी जो दौर है वो एकदम से गरमाया हुआ है, और साथ ही बात करें हम फसलों की तो बिल्कुल दोस्तों किसानों के लिए कहीं ना कहीं राहत ज़रूर मिली है मौसम को प्यारा प्यारा सा देखकर, खिली खिली सी धूप को देखकर। क्योंकि इस समय धर्मशाला में अब काम का जोर शोर से जो है ना एक एनर्जी भरा माहौल बन चुका है। पहले जो था थोड़ा सा था अभी किसानों को कि नहीं अभी कच्ची है अभी पकी नहीं है तो थोड़ा राहत थी, लेकिन अब तो ये जैसे संडे तक ऐसा लग रहा है कि सभी फ्री होने ही वाले हैं, क्योंकि जोर शोर से काम और मौसम का पता नहीं है ना कि फिर कब करवट बदल दे। तो दोस्तों धर्मशाला के तापमान की हम बात करें तो इस समय 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास धर्मशाला का तापमान आप सभी महसूस कर सकते हैं। और आइए सबसे खास बात मौसम विभाग के अनुसार क्या अपडेट है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है और राज्य में अब 3 दिनों तक मौसम साफ रहने का मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है। तो वह है ना ये राहत भरी न्यूज आप सभी के लिए। जी दोस्तों 11 और 12 मई को आंधी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है और 10 मई तक जो है मौसम फिलहाल साफ बताया गया है। तो अभी है 7, 8, 9, 10 3-4 दिन है तो बहुत है लोगों के लिए काम करने के लिए। खैर क्या पता आगे भी मौसम साथ दे ही दे, क्योंकि मौसम हर किसी के बारे में सोचते हैं। लोग भले ही एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन ये जो प्रकृति है ये जो मौसम है ना ये हर इंसान को इक्वली लेकर चलते हैं। हाँ कई बार नुकसान हो जाते हैं, वो हमारे कर्मों का फल होता है, तो खैर उसमें हम थोड़ा सा अपने आप को संभालें तो शायद बेहतर रहेगा। खैर ये तो थी मौसम की अपडेट आप सभी के लिए। तो 10 मई तक मौसम फिलहाल साफ रहने वाला है मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार। तो आप मन लगा के काम कर सकते हैं और अच्छे से फ्री हो सकते हैं बिना टेंशन के। बट पता नहीं है मौसम का मिजाज कब बदल जाए, तो खैर हमें हर पल अपने आप को अपडेट रखना बेहद ज़रूरी है। तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई है मौसम की। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगा हर्ट्ज़ से।

बहुत ही प्यारा सा ये एनर्जी से भरा हुआ उत्साहित वाला ये गाना आप सभी ने एंजॉय किया सचमुच दोस्तों। और यही एनर्जी आज के युवाओं में देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि हर कोई बस रास्ते भटक चुके हैं और मंजिल का पता नहीं है कि किस और जाना है और किस और नहीं जाना है। इंटरेस्ट है भी कुछ फील्ड्स में, लेकिन फिर भी उस पर अपना जो है इंटरेस्ट एक तरह से दिखा नहीं पाते, फैमिली इश्यूज़ की वजह से बोल सकते हैं या फिर और बहुत सारे इश्यूज़ हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं, तो उन्हीं की वजह से हम अक्सर अपनी चॉइसेस के हिसाब से अपनी फील्ड चूज़ नहीं कर पाते हैं, बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और सपने अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया, क्योंकि आज के दिन आप सभी मना रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। तो स्पोर्ट्स हमारी ज़िंदगी में कितने ज़रूरी हैं, खास करके युवाओं के लिए, फिट रहने के लिए, अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए, हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो बस यही जागरूकता फैलाने के लिए आज का दिन आप सभी के लिए खास है, और इसे और ज़्यादा खास बनाने के लिए आप सभी के साथ जुड़ी है आप सभी की अपनी होस्ट एंड टू स्ट्रोचिका।

0: कीज।
1: ओके बाय।
2: दोस्तों गीत संगीत और बातचीत इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि समय समय के हिसाब से हमें खुद को एडजस्ट करना, खुद को ढालना कितना ज़रूरी है। और फिलहाल कार्यक्रम में समय होने को है समाचारों का। जी दोस्तों, 9:20 पर आप सभी सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, अपने आसपास की कुछ खास जानकारी।

0: आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू। कल 8 और 11 मई को भी होगा नामांकन। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनावों के लिए कुल 1147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। 237 उम्मीदवारों ने वापिस लिए अपने नाम। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ आज। आतंकवाद के खिलाफ देश का संकल्प मजबूत। और राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने विद्यार्थियों से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इन चुनावों के लिए कल 8 मई और 11 मई को भी नामांकन भरे जा सकेंगे। 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रदेश में होने वाले इन पंचायत चुनावों के लिए 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जिनके लिए 26, 28 व 30 मई की तारीख निर्धारित की गई है। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों का परिणाम मतदान के दिन उसी शाम को घोषित किए जाएंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के मतों की गणना 31 मई को विकास खंड मुख्यालयों में की जाएगी और इसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में कुल 31,182 पदों के लिए चुनाव होगा, जिनके लिए कुल 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 25,67,770 पुरुष जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। साथ ही 52,349 युवा मतदाता पहली बार इन चुनावों में वोट डालेंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रदेश में 51 शहरी निकायों के चुनावों के लिए कुल 1147 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा 10 प्रत्याशी निर्विरोध भी निर्वाचित हुए हैं। कल नामांकन वापसी के अंतिम दिन 237 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। इन चुनावों में कुल 1426 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें 32 नामांकन पत्र अस्वीकृत किए गए, जबकि 1394 नामांकन पत्र स्वीकृत किए गए। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। इन चुनावों के लिए मतदान 17 मई को होगा।

0: आज देश ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकवादी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। आज हम सरकार की आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति पर बात करेंगे।
1: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया।
0: श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के तहत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। रसायनों, विषैले पदार्थों और भारी मशीनों के साथ काम करने वाले खतरनाक कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए उम्र की परवाह किए बिना स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। प्रदेश में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया के संरक्षण और न्यायाधीश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में ये अदालतें लगेंगी। इसमें विशेष रूप से ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में मोटर वाहन चालान मामलों के संबंध में कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान के लिए ईपे के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विद्यार्थियों से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करने और नशा मुक्त जीवन अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जीवन शैली का हिस्सा बनाने और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोने का भी आग्रह किया है। मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि नवाचार, नैतिकता और मानवीय संवेदनशीलता भी अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर उन्होंने 575 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की, जबकि 40 छात्रों को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया। किन्नौर जिले की काशंग जल विद्युत परियोजना के लेबर कैंप में हुए अग्निकांड में 2 मजदूरों की जलने से मौत हो गई। मृतकों में एक उत्तराखंड जबकि दूसरा नेपाल का मूल निवासी था। घटना के समय कैंप में मौजूद एक अन्य व्यक्ति सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। हमीरपुर जिले में हरनेड़ गांव के लगभग 52 परिवार पूरी तरह से प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता ने बताया कि ये किसान गेहूं, मक्की और गन्ने के अलावा पारंपरिक मोटे अनाज, दलहनी सहित अन्य फसलें प्राकृतिक विधि से ही उगा रहे हैं।
2: प्राकृतिक खेती की बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके ललित कालिया ने बताया कि उनके दादा परदादा कभी गन्ना भी लगाते थे और खाने में इसी की शक्कर का प्रयोग करते थे, लेकिन वर्तमान दौर में यहाँ गन्ने की खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ललित कालिया ने बताया कि पिछले सीजन में उन्होंने अपने 18 मरले खेत में प्राकृतिक खेती से ही गन्ना लगाने का निर्णय लिया तो सभी लोग इसे असंभव बता रहे थे। देखते ही देखते गन्ने की फसल तैयार होने लगी और इसकी कटाई के बाद उन्होंने पेराई भी स्वयं करवाई तथा इससे लगभग 70 किलोग्राम शक्कर निकली। ललित कालिया, पवन कुमार और आत्मा परियोजना के अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा के दौरान उपायुक्त गंधर्वा राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने में बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से तैयार खदानों और घराट के आटे की बेहतर मार्केटिंग के लिए जिला प्रशासन की ओर से हर संभव कदम उठाए जाएंगे। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने पंचायत चुनाव से संबंधित खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, ससुर का सरकारी भूमि पर कब्जा तो बहू नहीं लड़ सकेगी पंचायत चुनाव। दैनिक जागरण के शब्द हैं, पंचायत चुनाव के लिए नामांकन से एक दिन पहले नियम लागू करने की स्वीकृति। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, आशा वर्कर लड़ सकेंगी चुनाव, हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के स्पष्टीकरण पर लगाई रोक। हिमाचल दस्तक ने खबर दी है, कॉलेजों विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की तैयारी, 3 घंटे की बजाय 1 और 2 घंटे में एग्जाम करवाने का प्रस्ताव तैयार, सरकार को सौंपा। पंजाब केसरी का शीर्षक है, हिमाचल में 100 और सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी, 5 से कम विद्यार्थियों वाले स्कूल को साथ लगते स्कूलों के साथ किया जा सकता है मर्ज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू, कल 8 और 11 मई को भी होगा नामांकन। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनावों के लिए कुल 1147 उम्मीदवार चुनाव मैदान में, 237 उम्मीदवारों ने वापिस लिए अपने नाम। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ आज, आतंकवाद के खिलाफ देश का संकल्प मजबूत। और राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विद्यार्थियों से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करने का किया आह्वान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों, कहते हैं ना कि रिश्ते हमेशा प्यार से ही नहीं चलते, कभी कभी समझना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर इंसान अपनी फीलिंग्स शब्दों में नहीं बता पाता। कुछ लोग सिर्फ उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बिना बोले उनके दर्द को समझ जाए। अगर कोई इंसान आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, आपके उदास होने पर खुद परेशान हो जाता है और आपकी खुशी के लिए अपनी खुशी भूल जाता है, तो समझ लेना कि वो आपसे सच में प्यार करता है या आपको सच में चाहता है। लेकिन जो लोग सिर्फ टाइम पास के लिए साथ होते हैं, उन्हें आपके आंसू कभी दिखाई नहीं देते। वो सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका मन होता है, बाकी उसके बाद सब बदल जाता है। तो रिश्ते ऐसे तो नहीं निभाए जाते, क्योंकि रिश्तों में बराबर की समझदारी होना बेहद जरूरी है। अगर एक इंसान लड़ रहा है, झगड़ रहा है, दूसरा भी उसी तरह से शुरू हो जाए तो रिश्ते टूटने के मुकाम पर आ जाते हैं। तभी तो यहाँ समझदारी काम करती है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि हमें कब किस तरह से रिएक्ट करना है, किस बात का जवाब किस तरीके से देना है। इन छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखकर रिश्तों को संभाला जाता है और प्यार से निभाया जाता है। फिलहाल आइए दोस्तों, इसी प्यारी सी बात के साथ जो है इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 MHz से।

रैम्बो राइफल सुन हनीफ हटेले ए गफूर भाई अब तो होंगे फेरे। ए रैम्बो राइफल सुन हनीफ हटेले ए गफूर भाई

0: ए पक्या, ए मुल्ला उल्लास, ए ढक्कन दगड़ू।
1: दोस्तों हम किसी से कम नहीं, फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया सोनू निगम अनु मलिक की आवाज़ों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों हम किसी से कम नहीं है जब हम अपनी अहमियत को समझ लें, अपनी ज़िंदगी की गहराई को जान लें। तो सच में अपना आप जो है हमारे लिए सबसे बेहतर है। हर कोई अपने आप में एक कहानी ज़िंदगी की रचता है और अपना एक अस्तित्व जो है वो सबके सामने लेकर आता है। लेकिन अक्सर कई बार हम अपने आप को इतना कम समझने लग जाते हैं, दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम में जो काबिलियत है वो शायद किसी और में नहीं है। बस इतना सोचिए, बस इस बात का घमंड कभी अपने आप में लेकर मत आइए। अपने इस जुनून के साथ जिंदगी में आगे बढ़िए। और दोस्तों जिस तरह से हर एक इंसान की अपनी एक कहानी है, उसी तरह से हर दिन का अपना एक इतिहास है, अपनी एक अहमियत है। और इन इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट कर देखें तो बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी से जुड़ी बातें जानने के लिए हैं। बस देर है तो उन पन्नों को पलटने की। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज के दिन की। आज यानी कि 7 मई 2026 का दिन है। तो कितना प्यारा सा दिन है, बहुत ही प्यारी सी धूप भी खिली हुई है और जोर शोर से खेतों में सारे के सारे लोग पहुंच चुके हैं काम के लिए। और दोस्तों बात करें आज की अहमियत की, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे आज के दिन आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि जीवन जीने का एक अनुशासित तरीका है। इसी सोच को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए और लोगों के अंदर खेल के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है वो मनाया जाता है। जी दोस्तों, कहीं ना कहीं जब हम किताबी कीड़े बन जाते हैं और पेरेंट्स भी उसी दौड़ के पीछे भाग रहे होते हैं तो बच्चों को स्पोर्ट्स से कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं, उस अहमियत को वो छोटा आंकने लग जाते हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से कट जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम जो है वो नहीं दे पाते। पहले का समय होता था मिट्टी से खेल रहे हैं, पानी से खेल रहे हैं, बस खेलते खेलते ही हमें पता चल जाता था कि हमारे जो इंटरेस्ट है या हमारी जो पकड़ है वो कौन सी खेल में ज़बरदस्त है और जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब के समय में बस सुबह से लेकर शाम तक जो है हम बुक्स के आगे बैठे रहते हैं और बस उन्हीं के पीछे भागते जा रहे हैं, तो खेलों के लिए तो समय रहा ही नहीं है। तभी तो बीमारियां जो हैं हमारे शरीर में घर कर जाती हैं, क्योंकि शरीर जो है हिलता ढुलता नहीं है, बस एक ही पोस्चर में हम बैठे रहते हैं, उठ के बैठना बैठना, बस यही रूटीन जो है हम फॉलो करते हैं। तो इसी वजह से आज के समय में छोटी सी उम्र में ही बच्चों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जो माइग्रेन या सर्वाइकल या फिर ये हार्ट अटैक जैसी बीमारियां जो हमें एक कहते हैं ना कि बढ़ती एज में 40-50 के बाद सुनने को मिलती थी, अब वो जो है अभी हमें बच्चे जैसे ही जन्म ले रहे हैं तो उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, बस धीरे धीरे जैसे

जैसे वो जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बीमारी उन्हें जकड़ती जा रही है, क्योंकि उनके आसपास का माहौल हमने कैद कर दिया, उन्हें चार दीवारों के अंदर कैद करके रख दिया। तो वो कैसे अपनी इस जिंदगी को खुली सांस के साथ जी सकते हैं? तो जरूर बात करेंगे दोस्तों, इस पे जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने रेडियो सेट से।

बिल्कुल दोस्तों, गिरना, गिरकर संभलना, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है बातें। और खेलों की हम बात करें तो जब बच्चे जो हैं छोटे छोटे जैसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, बचपन से बाहर निकलते हैं, जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं, स्कूल से आकर जब सोसाइटी के बच्चों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खेलते कूदते हैं, तो उससे भी वो एक डिसिप्लिन सीखते हैं, उनमें समझ बनती है कि किसके साथ किस तरह से ट्रीट किया जाता है, कैसे बच्चों से बात की जाती है, कैसे बड़ों से बात की जाती है। एक दूसरे को देखकर भी वो बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स बच्चों को बाहर जाने नहीं देंगे, वो बच्चों के साथ उन्हें खेलने नहीं देंगे, तो फिर वो कैसे सीख पाएंगे? क्योंकि घर पे एक अलग सा माहौल होता है। घर पे आप कुछ भी बोलें, कुछ भी जो है गलतियां करें, उस पे ज़्यादा आपको रोक टोक नहीं होगी। लेकिन बाहर किसी बच्चे को अगर चोट भी लग रही है तो आपको वो चीज़ फील होगी कि आपकी वजह से अगर किसी को चोट लगी, किसी बच्चे को दुख पहुंचा, तो उसके लिए मुझे सॉरी भी फील करनी है। मतलब ये छोटी छोटी सी बातें जो हैं जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें सीखने को मिलती हैं। तो ये बातें ध्यान देने योग्य हैं। दोस्तों, एथलेटिक्स को सभी खेलों की जननी कहा जाता है, क्योंकि दौड़ना, कूदना और फेंकना लगभग हर खेल का आधार है। इनके बिना कोई भी खेल खेलना संभव नहीं है। ये दिन न केवल एथलीटों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए है, बल्कि तकनीक और आधुनिक प्रशिक्षण के इस दौर में युवाओं को स्क्रीन से दूर मैदान तक लाने का एक बड़ा माध्यम भी बन गया है। आखिर इस दिन की शुरुआत कैसे हुई, क्यों मनाया जाता है ये 7 मई को ही खास दिन? जी दोस्तों, तो स्क्रीन की हम बात करें तो आज के समय में बच्चे अक्सर सुबह से लेकर शाम तक जब घर पे बैठे रहेंगे तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके साथ इंडोर गेम्स खेलने के लिए भी कोई ना कोई तो चाहिए और पेरेंट्स के पास उतना समय नहीं है कि वो उनके साथ बैठ सके, खेल सके, तो उनके पास ऑप्शन क्या रहा? मोबाइल फोन्स, गेम्स, तो बस फिर उसी के साथ वो अपना समय बिताते हैं और हर टाइम जो है वो स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं। ज़रूरी नहीं है मोबाइल फोन्स, टीवी के आगे कार्टून्स देख रहे हैं, कोई मूवीज़ देख रहे हैं, तो वो हर टाइम स्क्रीन के आगे बैठकर अपने आप को बीमारियों की ओर लेकर जा रहे हैं। और जो चीज़ें वो मोबाइल्स में देख रहे हैं, जो टीवी में देख रहे हैं, वो रियल नहीं है, वो एक सिर्फ दिखावे के लिए हैं, मनोरंजन के लिए हैं, और बच्चे असल में ज़िंदगी में वही बातें दोहराने लग जाते हैं। वो उन्हें रियल समझकर रियलिटी में उतार देते हैं और वो गलत एक तरह से गलतियों की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं, कहते हैं ना दोस्तों, हम तो मनोरंजन के लिए, अपना समय बचाने के लिए बच्चों को ये चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी में उनका यूज़ करते हैं, ये पेरेंट्स को ध्यान ज़रूर देना चाहिए। फ़िलहाल आइए एक लेते हैं और प्यारा सा म्यूज़िकल ब्रेक।

जी दोस्तों, जब जिंदगी में जज्बा और जुनून हो तो हर मुश्किल आसान लगती है, हर परेशानी से लड़ने की हिम्मत हम रखते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में तो परेशानियां आती जाती रहती हैं, लेकिन उन परेशानियों के सामने अगर हम हार मान लें तो जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यही छोटी छोटी सी बातें, यही छोटी छोटी सी सीख जो है हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं, चाहे फिर वो खेल का मैदान हो या फिर ज़िंदगी की जंग। हर एक लड़ाई हमें जीना सिखाती है। तो आइए दोस्तों, अपनी बातचीत का रुख बदलते हैं और थोड़ा सा रुख करते हैं जानकारियों की ओर। और ज़रूर स्पोर्ट्स की बात हो रही है, खेल की बात हो रही है, तो खेल से जुड़ी एक बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाते हैं, जो कि क्रिकेट लवर है, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब धर्मशाला के मैच जो है वो शुरू होंगे और हम फुल ऑन इंजॉय करेंगे। तो जी दोस्तों, ये खास जानकारी आप सभी के लिए। धौलाधार की खूबसूरत वादियों में बसे धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर पहुंचने वाला है। हालांकि उत्साह के इस माहौल के बीच एचपीसीए ने फैंस को टिकट धोखाधड़ी को लेकर कड़ा अलर्ट भी जारी किया है। जी दोस्तों, आप सभी जानते हैं साइबर ठग जो है वो बस एक मतलब कि मौका देखते हैं, एक चीज़ मिल जाए उन्हें तो फिर वो फटाफट से उसे अपना हथियार बना लेते हैं। और अब सच में टिकट का जो है सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जैसे हमें टिकट लेनी है, तो हो सकता है कि साइबर ठग उसका भी फ़ायदा उठाएं और आपको जो है टिकट के पैसे लेके टिकट मिले ना। तो इस बात से आपको अलर्ट किया गया है, तो ज़रूर आप सावधान रहिए और टिकट लेते समय पहले जांच पड़ताल ज़रूर करें। दोस्तों, एचपीसीए के हॉस्पिटैलिटी मैनेजर राहुल सिंह ने ये खुलासा किया कि ठगों ने फैंस को लूटने के लिए अब तकनीक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि कुछ जालसाज चैट जीपीटी की मदद से फर्जी टिकटों के हूबहू सैंपल तैयार कर रहे हैं और भारी डिस्काउंट का लालच देकर लोगों को ठग रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया या किसी निजी संपर्क के जरिए टिकट बेचना पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने फैन से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति को टिकट के नाम पर भुगतान ना करें, क्योंकि स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर केवल असली टिकट ही मान्य होंगे। जी दोस्तों, तो इस बात का आप खास जो है वो ध्यान रखें और नुकसान ना झेलना पड़े और अपनी इस एक्साइटमेंट को भी ऐसे दबाना ना पड़े, मायूस ना होना पड़े, तो इसके लिए आपको ये सतर्कता सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। फैंस की सुविधा के लिए एचपीसीए ने निर्देश जारी किए हैं कि वे केवल आधिकारिक टिकटिंग पार्टनर जोमैटो के माध्यम से ही अपनी सीटें सुरक्षित करें। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी टीमों के आधिकारिक फैनबेस से भी जानकारी ली जा सकती है। 11 मई को दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मैच की टिकटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि 8 मई से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के हाई वोल्टेज मुकाबले के टिकट उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से, सतर्कता से भरी, जागरूकता से भरी, अलर्ट वाली। जी दोस्तों, तो अलर्ट रहिएगा और सावधान रहिएगा। विदाउट किसी भी जानकारी के आप किसी अननोन पर्सन को टिकट के डिस्काउंट के चक्कर में पैसे ना दें, क्योंकि अंदर नहीं जाने को मिलेगा तो फिर वो एक तरह से आपको निराश होना पड़ेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। फिलहाल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने रेडियो सेट से।

छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप सभी अपने काम के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी डेली रूटीन के साथ एंजॉय कर रहे हैं। जी दोस्तों, कई लोग जिंदगी में ऐसे भी होते हैं जो गलती करने के बाद भी अपनी गलती को मानने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उनके भीतर अहंकार इतना गहरा बैठा होता है कि सच सामने होते हुए भी वे उसे स्वीकार नहीं करते। उन्हें ना पछतावा होता है, ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का एहसास। और हम अक्सर एक उम्मीद में जीते रहते हैं कि शायद एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, वो खुद आगे आएंगे, माफी मांगेंगे, रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि हर किसी को अपनी गलती का एहसास अक्सर नहीं होता, और हर किसी के भीतर पश्चाताप की भावना भी नहीं होती। कभी कभी हमारी ये उम्मीद ही हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। हम इंतज़ार करते रहते हैं और सामने वाला अपनी दुनिया में बेफिक्र रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सच्चाई को स्वीकार करें। हर इंसान बदल जाए ये ज़रूरी नहीं। कुछ रिश्तों में सुकून पाने के लिए सामने वाले के बदलने का इंतज़ार छोड़कर खुद को समझाना पड़ता है, क्योंकि हर कहानी में माफ़ी नहीं होती और हर गलती के बाद पछतावा नहीं आता।

तो बहुत ही प्यारा सा गीत और न्यू टच में ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आप सभी जानते हैं कि अब एआई का जमाना चल रहा है, तो हर गीत को एक नया लुक दिया जा रहा है, नए एक म्यूजिक के साथ जो है उसे आप सभी के सामने लाया जा रहा है। तो कुछ कुछ बहुत ही अच्छे से भी लग रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, म्यूजिक जो है ना दिल को छू जा रहा है। और खैर, पुराने गीतों की तो एक बात ही अलग है, लेकिन कहते हैं समय के हिसाब से हमें खुद को ढालना भी चाहिए, एडजस्ट भी करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सा जो है हमें उसमें जरूर अपने आप को लाना चाहिए। खैर दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक और खास जानकारी की। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी महादंगल के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और ऐसे में राज्य की 3,754 पंचायतों में चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया है। इस बार के चुनावों में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में ये भी देखने को मिला है कि सरकारी संस्थाओं से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अपनी दावेदारी साबित कर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। इस बार 31,182 पदों के लिए ये चुनाव होने जा रहे हैं। जी दोस्तों, मैदानी हकीकत की बात की जाए तो जिला परिषद के सहित पंचायत स्तर पर राजनीतिक अगाओं के इशारे पर ही प्रधान उप प्रधान तक के उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल ये जो चुनावी माहौल है बहुत ही ज़्यादा गर्माया हुआ है। और अब आज से तो ये एक अलग रूप में सामने आने वाले हैं, क्योंकि आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है और 11 मई तक जो है ये नामांकन भरे जाएंगे। तो बिल्कुल फुल सपोर्ट के साथ आगे बढ़िए और ईमानदारी और सच्चाई के साथ इस रास्ते पर चलिए, तभी तो जिंदगी में कुछ बेहतर कर दिखाएंगे, कर पाएंगे। जी दोस्तों, तो यही उम्मीद और यही हम बात कह सकते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए 91.2 MHz से।

सो इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। और इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों और आप सभी गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का दिन यानी कि 7 मई 2026 का दिन एथलेटिक्स दिवस आज के दिन आप सभी मना रहे हैं। तो क्या है इस दिन का इतिहास, क्यों मनाया जाता है, ये जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो विश्व एथलेटिक्स दिवस की स्थापना साल 1996 में की गई थी। इसकी शुरुआत एथलेटिक्स के तत्कालीन शासी निकाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष प्रीमो नेवियोलो ने की थी। इसे आज हम वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जानते हैं। पहली बार इस दिन को मनाने का उद्देश्य स्कूली बच्चों और युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता को फैलाना था। संगठन का मानना था कि अगर बच्चों को छोटी उम्र से ही एथलेटिक्स से जोड़ा जाए तो वो न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होंगे बल्कि भविष्य के लिए चैंपियन एथलीट भी तैयार किए जा सकेंगे। अब आप सबके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर 7 मई की तारीख को ही क्यों चुना गया इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। दरअसल इसके पीछे एक संगठित प्रयास है। मई का महीना अधिकांश देशों में बाहरी खेलों के लिए अनुकूल होता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इस विशेष दिन को स्कूलों और क्लबों के कैलेंडर के साथ जोड़ा ताकि युवाओं की भागीदारी अधिकतम हो सके। इसे एक स्थिर वैश्विक तारीख दी गई ताकि पूरी दुनिया में एक साथ एथलेटिक्स का प्रचार हो सके। जी दोस्तों, तो कहते हैं ना, जितना हम खेलों के बारे में जाने, जितना इसको हम अपनी जिंदगी में ला सकें लाना चाहिए, क्योंकि हमारे मानसिक संतुलन के साथ साथ हमारी फिटनेस, हमारी शारीरिक जो बीमारियां हैं उससे भी हमें दूर रखता है। जो हम जिम ज्वाइन करते हैं, फिर पता नहीं कोई डाइटिंग करते हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन एक बार हम अगर स्पोर्ट्स में अपने आप को ढालना शुरू कर दें तो कोई जिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक्सरसाइज जो है हमारे लिए, क्योंकि हम जब भी कोई भी खेल में पार्टिसिपेट करते हैं तो हर खेल के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसे फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी से हमारा शरीर फिट रहता है और बीमारियों से भी दूर रहता है, तो है ना कितनी बेहतरीन बात। और देश के लिए, ज़रूरी नहीं है कि देश के लिए कुछ करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो है आर्मी में जाना पड़े या जवान, मतलब कि जवान ही बनना है, हर एक कदम जो है ना हमारा देश के लिए होना चाहिए। तो एथलेटिक्स से भी हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से। अपनी अपनी जगह में हर किसी की अहमियत है। जिस तरह से हमारे देश के फौजी जवान जो हैं देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर करते हैं, जान की परवाह किए बिना वो दिन रात हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उसी तरह से हर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी का जो है ना योगदान अपने देश के लिए देना बेहद ज़रूरी है, तभी हम अपनी इस लाइफ को समझ पाएंगे। खैर दोस्तों, इसी के साथ, क्योंकि बातचीत जो है ना बहुत गहरी और गंभीर होती है और बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि साथ ही साथ मनोरंजन भी बेहद ज़रूरी है।

तो बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। सच में दोस्ती याराना जो है ना हमारी जिंदगी में कुछ हद तक अहमियत तो रखता है, लेकिन जो डिपेंड करती हैं बातें वो हमारे बिहेवियर पे या फिर इंसान के जो भी हम जिसके भी साथ दोस्ती रख रहे हैं याराना रख रहे हैं उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाने में हमारी पूरी मदद करते हैं, हर एक सुख दुख में वो जो है सपोर्ट में रहते हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि गलत रास्तों की ओर प्रेरित करते हैं, जो गलत रास्तों की ओर भटका देते हैं, राह भटका देते हैं। लेकिन खैर फिर भी हम यही कह सकते हैं कि नज़रिया अपना है, सोच अपनी है और दिमाग भी अपना अपना है, लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम उनके जाल में उनके सिकंजे में आ ही जाते हैं। अनजाने में ही सही, लेकिन हाँ गलती तो हो ही जाती है। दोस्तों इसी के साथ एक बहुत ही खास बात आप सभी के लिए, खास जानकारी। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगणमन के समान दर्जा देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू हैं, यानी इसके अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा होगी। अभी राष्ट्रीय ध्वज संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। तो ये बहुत ही खास बात, बहुत ही खास जानकारी आप सभी के लिए। और इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे मनोरंजन के साथ।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बोलने से पहले सुनना सीखिए, खर्च करने से पहले कमाना सीखिए, लिखने से पहले समझना सीखिए, हार मानने से पहले एक बार कोशिश करना सीखिए, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखिए और मरने से पहले खुलकर जीना सीखिए। दोस्तों, चंद शब्दों में, चंद लाइनों में जिंदगी की इतनी बड़ी सीख छुपी हुई है। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो ये जिंदगी की रियलिटी है कि कभी भी हमें बोलना चाहिए, बोलना जरूर चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें सुनना भी आना चाहिए। क्योंकि अक्सर कुछ लोगों की ये आदत होती है कि जो मन में आए वो दूसरों को सुना देना, चाहे वो किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे वो आपकी एक आदत है, हैबिट है कि आप गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम सुन नहीं पाते, हम सुनने से पहले सुना देते हैं। तो जब हम किसी को बोलने की हिम्मत रख रहे हैं तो ये सबसे बड़ी सीख है कि उसी के साथ सुनने की हिम्मत भी रखिए, तभी किसी को बोलिए, अदरवाइज मत बोलिए। जब भी हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले कमाने की अहमियत समझिए, सिर्फ खर्च करने पे ध्यान मत दीजिए। क्योंकि पैसे खर्च करना एक नॉर्मल सी बात है। बाजार में जाइए, आपको 100 चीजों के लिए 10,000 या पता नहीं कितने पैसे उड़ा देंगे, एक सेकंड में पता नहीं चलेगा। लेकिन एक रुपया कमाने में कितनी मेहनत लगती है, ये बच्चों को जरूर समझाइए, जरूर बताइए। माना कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, करोड़ों के पैसे हैं, लेकिन आपके बच्चे को एक रुपए की कीमत का पता होगा तभी वो जिंदगी में एक सफल इंसान जो है वो बन पाएगा। तो दोस्तों, जिंदगी में ये छोटी छोटी सी बातें, खैर इन बातों पे अगर हम ध्यान देने पे आए तो बहुत लंबी कहानी बनकर सामने आ जाएगी। लेकिन कहते ना, समय है, समय की पाबंदियाँ भी हम पे थोड़ी सी रहती हैं, और जब बहुत सारी बातें हो जाएंगी तो आपके कान जो है फिर थोड़े से बोरिंग हो जाएंगे और ध्यान आपका भटक जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान भटकाना नहीं है, फिर से मनोरंजन की ओर खींच कर लेकर आना है। तो एंजॉय कीजिए दोस्तों कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से।

अपनी बातचीत का रुख फिर से जानकारियों की ओर लेकर आते हैं आप सभी का ध्यान फिर से, क्योंकि एथलेटिक्स डे आज के दिन आप सभी मना रहे हैं। तो दोस्तों, खेलों की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। दोस्तों, हिमाचल के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को आईपीएल के 3 मैचों के बाद अब एक बड़ा मुकाबला यानी कि टूर्नामेंट का पहला क्वालिफायर भी मिल गया है। 26 मई को टूर्नामेंट की ग्रुप स्टेज की 2 टॉप टीमों के बीच ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा और इस मैच को जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में जाएगी। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार को टाटा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 के प्लेऑफ का कार्यक्रम घोषित किया और इसमें बेंगलुरु में होने वाले प्लेऑफ मुकाबले दूसरे स्टेडियमों में शिफ्ट किए गए हैं। घोषित कार्यक्रम के मुताबिक धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में 3 लीग मैचों के अलावा अब सबसे बड़ा क्वालिफायर 26 मई को खेला जाएगा। यहां से जीत हासिल करने वाली टीम सीधे फाइनल में जगह बनाएगी, जो कि अब बेंगलुरु की जगह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसे में धर्मशाला के लिए ये एक बड़ा मौका होगा, जहां पहले क्वालिफायर जैसा बड़ा मैच खेला जाएगा। इससे पहले धर्मशाला में 11 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स, और इसी तरह से रूटीन में 3 मैच जो है वो खेले जा रहे हैं जी। दोस्तों, 11, 14 और 17 मई को एचपीसीए स्टेडियम में आप क्रिकेट का एंजॉय लेने वाले हैं और इसी के साथ 26 मई को आईपीएल का, बिल्कुल। तो है ना, ये बहुत ही खास खुशखबरी आप सभी के लिए, खास करके धर्मशाला वासियों के लिए जी। दोस्तों, जब ये ऐसे जो अवसर मिलते हैं तो रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है, पर्यटकों की जो है, लोगों की यहाँ आना जाने की जो है चांसेस बढ़ जाते हैं और काफ़ी लोगों को जो है इससे फ़ायदा भी होता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी खास जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को मनोरंजन की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए।

दोस्तों कहते हैं आपकी असली खूबसूरती आपके चेहरे में नहीं बल्कि आपके उस दिल और व्यवहार में है जो सबको साथ लेकर चलता है। और ये भी कहा जाता है कि घर ईंट पत्थरों से बनता है, लेकिन उस घर को स्वर्ग आप अपनी मुस्कुराहट और ममता से बनाते हैं। दुनिया में आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आप अपनी सादगी में भी इतनी मुकम्मल हैं कि किसी को आपको बदलने की ज़रूरत नहीं। अक्सर हम जिंदगी में अगर किसी के आ जाने से खुद को बदलने लग जाएं, खुद को एक नई पहचान देने लग जाए, तो वो फिर हम असल में अपनी ज़िंदगी खोने के बराबर हो जाता है। दोस्तों हम जैसे हैं खुद को हमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, खुद पे हमें विश्वास होना चाहिए। तो जैसे हम खेलों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन जो है बहुत खास है खेलों के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारी फिटनेस से जुड़ी, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी जो है बातें इससे मैटर करती हैं। तो अगर हम अपने आप पे विश्वास रखेंगे, तो अगर हमारा इंटरेस्ट है, हमारी एक शौक है, हमारे सपने हैं खेलों में ज़िंदगी में आगे बढ़ने के, तो ज़रूर आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है खुद पे विश्वास रखने की, खुद पे हिम्मत जो है वो बनाए रखने की। दूसरों को देखकर देखा देखी के रास्ते जब हम अपना लेते हैं, तो अपनी मंजिल अक्सर हम भूल जाते हैं और बीच राह में कहीं भटक जाते हैं। तो भटकना बिल्कुल नहीं है, हमें बस चलते जाना है अपनी ज़िंदगी की सही राह की ओर।

0: यार ने दिल विच वसना,
1: ओ हमें अपना बना, हाथियारी का बढ़ा, तुझे कसम हमारे प्यार दी कभी चली।

291.2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ इस बहुत ही प्यारे से सफर में इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं। दोस्तों, और समय कब हाथों से निकलता जाता है पता नहीं चलता। 9 बजे से लेकर ये अभी 11 बजने को ही है, 10:58 हो चुके हैं दोस्तों। सिर्फ 2 मिनट का समय जो है हमारे पास बचा हुआ है। तो सचमुच ये जो हमारा साथ है, ये जो हमारा एक प्यार है ना दोस्तों, वो इस तरह से हमें जोड़े रखता है कि बातों ही बातों में कब 2 घंटों का ये सफ़र गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मन करता है कि बस आप सभी के साथ बातें करते रहूं, लेकिन आप सभी का मन तो यही करता होगा कि ढेर सारे गाने सुनाए जाएं, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों बातें भी ज़रूरी होती हैं, जानकारियां भी ज़रूरी होती हैं। और रुचिका तो आप सभी के ऊपर ढेर सारी बरसात करती है बातों की। तो खैर दोस्तों, कहीं ना कहीं सीख से जुड़ी, ज़िंदगी से जुड़ी बातें भी होती हैं उनके बीच में। तो उम्मीद यही करती हूँ कि उन बातों को आप अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पाएँ, और जाने अनजाने में कहीं अगर आप अपनी ज़िंदगी में राह भटक रहे हैं तो उस भटकती हुई राह से खुद को सही राह की ओर खींच कर लेकर आ जाएं, क्योंकि ये जो साथ है सिर्फ मनोरंजन तक का साथ नहीं है दोस्तों, हमारा ज़िंदगी में एक सही राह की ओर बढ़ना भी हमारे लिए ये बहुत बड़ा माध्यम है। तो मेरी तो खास करके ये उम्मीद रहती है दोस्तों आप सभी के लिए। बाकी आप सभी जानते हैं कि आपको ये साथ किस तरह का लगता है, कैसा लगता है, इंजॉय करते हैं या फिर आप अच्छे से जानते हैं। तो खैर दोस्तों, इन्हीं बातों के चलते अब इसी उम्मीद के साथ अब सफ़र जो है आप सभी से अलविदा लेने के मुकाम पर पहुंच चुका है। तो दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका को ढेर सारी बातों से, इस प्यारे से कार्यक्रम से, कार्यक्रम को संपन्न करने की। तो फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी अपने काम को एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला को एंजॉय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जी दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आप सभी का मनपसंद रेडियो सेट। एंजॉय करते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिए।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं,
2: मानो या ना मानो तुम

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इसे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान कमाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अचानक।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं।
2: मानो या ना मानो तुम,

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019701. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इसे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान कमाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अचानक।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों, हम कई बार सुनते हैं कि जो बीमारियाँ होती हैं वो हमें बिल्कुल तहस नहस कर देती हैं, हमारे पूरे परिवार को तहस नहस कर देती हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो उन बीमारियों से बाहर आते हैं, या अंग जिनके फेल हो जाते हैं उनको बहुत ही कम अंग मिल पाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ऐसे लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिन्हें कोई अंग मिल जाए या जिन्हें ज़्यादा वेट ना करना पड़े, क्योंकि हमारे देश में अंगदान के ऊपर से इतनी कम जागरूकता है कि इतने कम लोग अंग डोनेट करते हैं, अंगदान करते हैं, कि जो पेशेंट्स हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है और उसके मुकाबले में जिन लोगों को अंग मिलता है उनकी संख्या बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूँ जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है और मैं बोलूँगा कि लकी रहे भी और लकी ना भी रहे। लकी इसलिए नहीं थे क्योंकि बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत सारी परेशानियाँ झेली, और लकी इसलिए भी रहे कि बहुत कम समय में इन्हें अंग मिल गया जिससे इनकी जान बच पाई और आज की डेट में ये बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है राहुल और ये बागपत के रहने वाले हैं जो दिल्ली के पास पड़ता है हरियाणा में। राहुल, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार।
3: नमस्कार। पहले तो सर मैं आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार करना चाहूँगा, फिर मैं अपने बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा।
2: जी राहुल जी, हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि आप करते क्या हैं, पढ़ते हैं या काम करते हैं, और जो ये आपकी तकलीफ थी वो कब शुरू हुई और कहाँ शुरू हुई, और हृदय प्रत्यारोपण, दिल का जो प्रत्यारोपण है वहाँ तक बात कैसे पहुँच गई?
3: मैं शुरुआत से आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी 12वीं क्लास के एग्ज़ाम दे रहा था, 12वीं क्लास का एग्ज़ाम मतलब बोर्ड एग्ज़ाम, और तो उस दौरान की बात है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे बोर्ड एग्ज़ाम के और मुझे फीवर आया। फीवर आने पर मैंने उस पर ध्यान कम दिया और नॉर्मल क्लिनिक से 3 दिन बाद दवाई ली और फीवर तो ठीक हो गया, फिर खांसी ने अपनी जगह बना ली। खांसी की वजह से मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। इसी दौरान मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट हुए और मैं छुट्टियों में अपने गांव चला गया। गांव जाने के बाद मुझे और वीकनेस फील होने लगी, कमज़ोरी लगने लगी, तो वहीं से ही मैं मेरे गांव के पास एक बड़ौद सिटी है, बड़ौद में गया। बड़ौद में जाने के बाद एक डॉक्टर प्रदीप जैन है, उन्होंने मेरी बीमारी को जांचा और पता लगाया कि क्या है। तो वो एक DCMP एक बीमारी है जिसका आपका नाम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। इसका इलाज तो उनके पास था पर उनके पास मशीनों की कमी होने के कारण उन्होंने कहा कि आप दिल्ली के लिए मुझसे रेफर करा लीजिए और आप एम्स में दिखाइए अपने आप को।
2: आपने फाइनली दिल्ली गए और हॉस्पिटल में दिखाया, तो आप एम्स ही गए या किसी और हॉस्पिटल में गए?
3: शुरुआत में मैंने अपने आप को गुड़गांव के RTMS हॉस्पिटल में दिखाया था जब मेरी उम्र 27 साल में चल रहा था मैं।
2: जी, बट वहाँ पर कोई
3: पकड़ में नहीं आया और फिर उन्होंने भी बोला कि आप एम्स में आप ट्रीटमेंट कराइए। उन्होंने भी मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर जुनेजा।
2: तो फाइनली एम्स में आप गए, वहाँ पर फिर क्या हुआ?
3: एम्स में मैं डॉक्टर जुनेजा अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पर, और मैं डॉक्टर संदीप सेठ के अंदर मेरा ट्रीटमेंट चला। डॉक्टर संदीप सेठ ने मुझे 15 दिन तक मेरे बेसिक टेस्ट किए और टेस्ट के दौरान मुझे ऐसा लगता था कि ये तो पता नहीं क्या करेंगे, 15 दिन तो ऐसे ही निकल गए, तो मैं अभी ऐसे ही कुछ दिन बाद इस दुनिया से चला जाऊंगा। पर ऐसा नहीं था, मुझे एम्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। एम्स में जो भी डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को देखता है तो उसकी बीमारी को गहराई में जानने की कोशिश करता है और उसको जड़ से ठीक करने का उपचार खोजने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ और 15 से 16 दिन बाद जो दवाइयाँ डॉक्टर संदीप सेठ ने स्टार्ट की तो उनसे मैं दिन प्रतिदिन ठीक होता चला गया
2: जी। तो फाइनली जब आप ठीक हो गए बिल्कुल, तो उसके बाद अंग प्रत्यारोपण, आपके दिल के प्रत्यारोपण तक बात कैसे पहुंची जब आप एक बार ठीक हो चुके थे?
3: जी, ये एक मेरे लिए भी अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ थी कि मुझे पता नहीं था और ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इसका शुरुआत यहाँ से हुई कि मैं 2017 तक मैं एकदम ठीक था, सारे अपने काम करता था, कॉलेज भी मैंने कंप्लीट कर लिया था और जॉब की तलाश में मैं घूम रहा था। उस दिनों सर्दियों का टाइम था, 11 तारीख दिसंबर की 11 तारीख थी और 2017 में मुझे सुबह के टाइम 11 तारीख को एक पैरालिटिक अटैक आता है और जिसमें कि मेरे परिवार को और मुझे ये नहीं पता था कि एक अटैक आना और एक पैरालाइज होना, स्ट्रोक आना क्या होता है, इसकी जानकारी से हम अवगत नहीं थे। और जैसा कि मेरी तबीयत खराब होती गई, मेरी मदर ने जब तक मेरा फेस नहीं देखा था तो वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाई थी, उनको भी पता नहीं चला था कि इसको हुआ क्या है। बाद में हम लोगों ने, मेरी मदर ने मेरा फेस देखा तो मेरा फेस टेढ़ा हो चुका था आधे से ज़्यादा, तो मेरी मदर ने मुझको बताया और मेरा जो लार होता है वो टपक रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था, मेरी मदर वो घबरा गई ऐसा देखकर।
2: और आपको इन सब चीज़ों का कोई एहसास नहीं?
3: मुझे कोई एहसास नहीं हो रहा था।
2: आपकी सलाइवा गिर रही है, आपका मुंह टेढ़ा हो चुका है
3: जी,
2: बिल्कुल सेंसेशन नहीं था।
3: फिर मेरी मदर ने मुझको बताया ये क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें बताई तो मुझे फिर डाउट हुआ कि शायद ये पैरालिसिस हो सकता है।
2: बिल्कुल।
3: फिर मैंने इस कंडीशन में जहाँ तक भी एम्स में मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा था तो मेरे फ्रेंड्स के पास मैंने फ़ोन किया, तो राजन मेरा एक फ्रेंड है वो आया, आने के बाद उसने बोला चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं।
2: तो फिर आप सीधा एम्स गए?
3: सीधा हम एम्स आए और एम्स आने के बाद इमरजेंसी में एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद जाते ही पैरालिसिस में एक इंजेक्शन लगता है, उसका नाम मुझे पता नहीं है, और
2: ट्रीटमेंट
3: शुरू कर दिया।
2: तो ये दिल की वजह से था पैरालिटिक अटैक, जो दिल की आपको पहले प्रॉब्लम हुई थी?
3: नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर से पूछने के बाद मुझे पता चला कि लंबे समय तक दवाइयाँ खाने से और खान पान में थोड़ा सा बदलाव होने से
2: जी,
3: तो ये मुझे स्ट्रोक आया था और ये मुझे सोते सोते आया
2: जी।
3: तो एक दिन तक मैं इमरजेंसी में रहा, फिर नेक्स्ट डे मुझे उसी दिन मेरी जाँच, दिमाग की भी जाँच करने के लिए न्यूरो से डॉक्टर आए और दिल की जाँच करने के लिए कार्डियोलॉजी से डॉक्टर आए। तो फिर बाद में मेरे डॉक्टर संदीप सेठ सर हैं, उन्होंने अपनी टीम को भेजा और डिसाइड किया कि इसको आईसीयू में लेकर आते हैं। और जब तक मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मेरा पल्स रेट 18-19 ऐसा चल रहा था एक मिनट में,
2: इतना कम हो गया
3: जी। फिर डॉक्टर ने कोशिश की, कोई दवाइयाँ देने की कोशिश दी भी मुझे, तो वो ओवर डाउन होता चला गया। फिर कुछ घंटों बाद मुझे उल्टियाँ आनी चालू हुई, तो पूरी रात में 3 बार तो उल्टियाँ आई, जिसकी वजह से मेरे शरीर में इतनी कमजोरी आ चुकी थी कि मैं सांस नहीं आ रही थी मुझको। तो फिर किसी डॉक्टर से बात करने के बाद आईसीयू के डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी और जिससे कि मैं बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया और मेरी आँख मॉर्निंग में अगले दिन 9 बजे खुली, जो कि डॉक्टर संदीप सेठ ने आँखों में उठाया था।
2: तो राहुल, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव। ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आँखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आँखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं और किसी और को ज़िंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने ज़िंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा ज़िंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है। उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही फ्लैश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: दोस्तों हम वापस आ गए हैं इस ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं राहुल से जो कि हार्ट रेसिपिएंट हैं और 2018 में इनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था जी। सो राहुल, आपने ब्रेक में जाने से पहले बताया कि जब आपको स्ट्रोक आया और फाइनली आप कार्डियोलॉजी यूनिट में पहुंच गए और आपके जो डॉक्टर पहले से आपका ट्रीटमेंट कर रहे थे आप उनके अंडर में ट्रीटमेंट आपका चालू हुआ, उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ये हुआ कि डॉक्टर ने एक्टिन ब्लाई इलेक्ट्रिक शॉक लगाया गया ताकि हार्ट दोबारा रिकवर कर सके, जो कि सफल नहीं रहा। थोड़ा ठीक तो हो गया था वहाँ पर, लेकिन हार्ट की में इतनी दिक्कत आ चुकी थी कि डॉक्टर ने मेरी फैमिली को ये बता दिया था अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो इसको अगर दोबारा ऐसे ही कोई अटैक आ गया और आएगा 99% ये भी बोला तो आप हम इसको नहीं बचा पाएंगे और आप इसको टाइम से हॉस्पिटल नहीं ला पाएंगे, तो जिसके वजह से ये ट्रांसप्लांट की नौबत आई और मेरी फैमिली को बताया गया। और मेरे पापा मेरी दादी से पूछने के बाद मेरी दादी को उन्होंने बताया तो मेरी दादी ने साफ इनकार कर दिया था कि हमें कोई भी किसी भी तरीके का ऑपरेशन नहीं कराना है, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को ये बोल दिया था कि ऑपरेशन कराते लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मेरे पापा को डांटा भी था कि तू लड़के का नाश क्यों कर रहा है, ऐसा वर्ड बोल के सीधी लैंग्वेज में।
1: उनको बताया नहीं गया था कि आपके जो दिल है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है और नए हार्ट के

0: जरिए ही आपकी जान बचाई जा सकती है।
1: ऐसा उनको बता दिया था, जैसा कि उनकी उम्र 85-86 साल है, तो ग्रामीण औरत हैं, ग्रामीण लेडीज हैं, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं है और गांव तक तो ये बातें पहुंचती नहीं। जब तक शहरों में ही ये बातें नहीं पता है किसी को कि ये हृदय प्रत्यारोपण भी हो जाता है,
0: बिल्कुल,
1: तो बुजुर्गों तक कैसे पहुंचेगा। तो उन्होंने उस टाइम सख्त मना किया था, फिर भी हमने उनको बताया और समझाया और मेरे परिवार ने और मेरी दादी ने हाँ करा। तो डॉक्टर्स ने अपनी तैयारी की हुई थी और मुझे एक महीना ओवरकप के लिए हॉस्पिटल में रखा और 31 जनवरी 2018 को डिस्चार्ज दिया गया मुझे कि जाओ घर पे रहो और एक डेढ़ हफ्ते में फिर से आना, हम आपको टेस्ट करेंगे कि घर पे आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ लगा तो नहीं है, आपकी तबीयत तो खराब नहीं है, ऐसा कुछ।
0: ये हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद?
1: नहीं, पहले।
0: तो आपने फिर अपने आपको वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करवाया?
1: वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करा चुका था, जिसमें कि मेरा तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई थी, मेरी फैमिली को ज़्यादा मशक्कत नहीं की गई थी,
0: करनी पड़ी थी,
1: जिसमें कि सारा काम ऑल इंडिया मेडिकल के और वो डिपार्टमेंट ने किया
0: जी। उस तो करीब कितने दिन आपको, कितने महीने आपको वेट करना पड़ा?
1: और वो डिपार्टमेंट के अनुसार तो ये बोला गया था कि 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं
0: जी,
1: और 6 महीने भी लग सकते हैं।
0: ये पूरा डिपेंड करता है कि कितने डोनेशन कब होता है।
1: हाँ, रिलेशनशिप एंड के ऊपर, डोनर फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि कब डोनर मिलेगा और कब आपको मिलेगा,
0: आपका नंबर आएगा
1: जी।
0: आपको पता था आपका नंबर कौन सा नंबर है?
1: नहीं, ऐसा कोई ना तो मैंने जानने की कोशिश की और ना ही उन्होंने कुछ ऐसा बताया।
0: चलिए, इसके बाद क्या हुआ?
1: इसके बाद ये हुआ कि मुझे घर पर भेज दिया गया, जैसा कि मैं ठीक हो गया था मेरी नज़रों में और मेरे माता पिता की नज़रों में एकदम ठीक था, डॉक्टर्स को भी पता था ठीक है अभी, तो घर पे रह रहा था। 25 से 26 दिन हुए मुझे घर पे रहते हुए और मेरे पास एक शाम के समय 17 फरवरी 2018 को शाम 7 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया और वो डिपार्टमेंट से राजीव महकुर जी का
0: जी,
1: जो कि वहाँ पर एक समाज सेवी हम MSSO हैं
0: जी, मेडिकल सोशल वर्कर हैं इसके हेड।
1: तो उन्होंने बोला कि राहुल तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट होना है क्या? मैंने कहा यस सर, मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट होना है। तो उन्होंने बोला तो फिर कितनी देर में आप एम्स आ जाएंगे? तो मैंने कहा सर मैं तो अभी आ जाऊंगा 2 घंटे में, मुझे तो पता नहीं था ना कितना समय लगेगा। तो उन्होंने कहा 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, घर पर आपके साथ आएगा कौन? मैंने बोला कि मेरे फादर मेरे साथ आएंगे। और सारी डिटेल्स उन्होंने पूछी कि गाड़ी से आएंगे, बाइक से आएंगे, कैसे आएंगे, उसके अनुसार उन्होंने उन्हें टाइम के बारे में बोला कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे में आप आ जाइए। मेरे पापा को उन्होंने ये बताया कि आप 1 घंटे में ला सकते हैं तो आ जाइए, वरना नहीं कराना चाहते हैं तो फिर एक बच्चा और है जो रजिस्ट्रेशन की लाइन में है,
0: वेटिंग में है
1: जी। तो मेरे फादर ने बोला कि हम 1 घंटे से पहले पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो बाइक का एक साधन मेरे पापा ने अच्छा चूज़ किया, जिससे कि
0: ट्रैफिक से बचा जा सके।
1: और हमें परमिशन भी मिल चुकी थी एम्स से कि अगर कोई पुलिस वगैरह कोई रोकता है तो हमारी बात कराई जाए, तो वो बिना कुछ कहे आपको छोड़ देंगे।
0: सो मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को हाईलाइट करना चाहूँगा कि देखिए, आपने जैसा राहुल ने बताया कि बाइक पर ही अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने के लिए एम्स गए
1: जी जी, तो
0: कितनी अनोखी बात है कि कुछ दिन पहले तक जो बेड पर जिनकी पल्स 18 चल रही थी, जो बिल्कुल अपने आप को ख़त्म समझ चुके थे, आज बाइक पर अपना नए हार्ट लगवाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे
1: जी,
0: और पूरी तरह से उस टाइम पर वो पूरी तरह से स्वस्थ थे।
1: जैसा कि हर किसी बच्चे के माता पिता उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, तो मेरे दिमाग में उस समय यही फीलिंग चल रही थी कि मेरे पापा एक मुझे गिफ्ट दिलवाने के लिए ले जा रहे हैं बाइक पर बैठा के
0: जी बिल्कुल। राहुल, हम यहाँ पर एक छोटा सा अंतराल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: दोस्तों हम वापस आ गए हैं इस छोटे से अंतराल के बाद। हम बात कर रहे हैं राहुल प्रजापति से जो कि हार्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हैं। राहुल आपने ब्रेक में जाने से पहले बताया कि किस तरह से आप बाइक पर हॉस्पिटल गए और आपको कॉल आया, तो फाइनली आप कितनी देर में पहुंच गए हॉस्पिटल और उसके बाद की जर्नी?
2: जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरे पापा मुझे एक उपहार दिलाने के लिए जैसे लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ, उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होगा, उन्होंने पूरी कोशिश की, किसी रेड लाइट पर हमने बाइक नहीं रोकी और ना ही इतना लकी दिन था कि किसी पुलिस वाले ने हमें आके रोका। तो फिर हम 40 मिनट में एम्स पहुंच चुके थे अपने घर से।
1: उसके बाद फिर एडमिट होना, आपके सारे चेकअप्स भी किए हुए हैं।
2: जी जी, तो मुझे नहीं पता था कि ये हार्ट ट्रांसप्लांट इतना बड़ा प्रोसीजर है कि एम्स में हमसे ये भी नहीं पूछा जाएगा आप हैं कौन, जहाँ पे एक आम आदमी भी किसी डिपार्टमेंट में घुसने से पहले गार्ड पूछता है कि आपको जाना कहाँ है।
1: जी,
2: उनको ये पहले बता दिया गया था कि एक बच्चा आ रहा है राहुल नाम का और वो बाइक से आ रहा है अपने फादर के साथ, तो सारे बैरिकेड उन्होंने तोड़ चुके थे, मतलब हटा चुके थे। सिर्फ उन्होंने एक बार लास्ट में जो बैरिकेड था उसमें पूछा राहुल हो क्या आप, बस फिर वो हम सीधा गए और एक संतोषी मैडम है नर्सिंग स्टाफ में, उन्होंने जाते ही वो मेरा, उनकी डबल ड्यूटी लगाई गई मेरी वजह से।
1: जी
2: हाँ, जो कि हमारा दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम ही है।
1: जी,
2: तो ये सब भगवान का लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या। अभी वो मुझे इतना, हमारा इतना ज़्यादा कनेक्शन हो गया है कि एक ब्रदर सिस्टर की तरह, तो वो थी वहाँ पर और मेरा सारे टेस्ट उनके अंडर में हुए और वो फिर मुझे एडमिट कराने के बाद अपने घर चली गई।
1: सो राहुल, तब की लाइफ में और अब की लाइफ में आपको क्या अंतर देखने मिलता है अपने अंदर? कई लोग पूछते हैं कि जैसे दूसरे का दिल लगा है तो हमारा मन चेंज हो जाएगा क्या?
2: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे माइंड में तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया ही नहीं। बाकी मेरी मदर फादर और दादी के मन में और जो कुछ लोग फ्रेंड्स हैं ऐसे, तो उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते थे कि तुझे कुछ अजीब सा तो नहीं लगता, कि छाती में दर्द तो नहीं होता, और ये भी सोचते थे कि कभी इसकी लाइफ तो कुछ ही दिनों की है, ट्रांसप्लांट तो इसका हो गया है पर लेकिन ये कैसे सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब जानकारी पूरी नहीं होने के कारण उनको ऐसा लगता था कि ऑपरेशन तो हो गया है और हालांकि दिल बदला गया पूरा, तो एक दो साल, तीन चार साल ये जिएगा और फिर उसके बाद वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आज भी किसी को इस बारे में पूरी नॉलेज नहीं है कि हमारे ही घर के पास, हमारे घर से कुछ किलोमीटर दूर ऐसे ऐसे अस्पताल बन चुके हैं, उसमें इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में जाने माने डॉक्टर्स हैं, और जाते ही आपको सिर्फ उनके पास एक रजिस्ट्रेशन कराना है और सिर्फ वेट करना है ऑर्गन का, ऑर्गन आएगा और आप ठीक हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी पुरानी ज़िंदगी आपको वापस मिल जाएगी।
1: कई लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं बहुत सारी, अब वो देखते हैं आपको, आपकी दादी
2: जी
1: वो भी देखती होंगी आपको, क्या विचार है उनके, कितने विचार चेंज हुए?
2: दादी के विचार है इस प्रकार, इस तरीके से हैं कि दादी जब भी देखते हैं खुश तो पूरी हो जाती हैं, पर जब

0: फिर मैंने उनको जब उन्होंने एक बार उनसे पूछ लिया तो मैंने बोला कि दादी मैं उस समय अपनी दवाई लेके थोड़ा गैप देता हूँ।
1: और वो शरीर का नाश हो जाना, उसके बारे में उनके क्या थॉट्स हैं?
0: दादी ने जब मैं ठीक हो गया तो दादी तो इतनी रोने लगी कि एकदम से ठीक हो गया है, और डोनर फैमिली के लिए उनके मन में ऐसे ऐसे शब्द थे कहने के लिए जो कि बहुत भावुक करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे का बच्चा चला गया और हमारा बच्चा हमारे पास वापिस आ गया है, तो उनके भगवान में उनके सामने हाथ जोड़ती हूँ। उनका जो शुक्रिया है वो मैं कैसे अदा करूँगी, उनसे मैं मिलना चाहती हूँ। सब कुछ उनके क्वेश्चन थे, हमसे थे, उन्होंने डॉक्टर से तो वो नहीं मिली थी
1: जी,
0: तो ऐसा सब कुछ था। और दादी तो एक ही अब इच्छा है कि मेरी दवाइयाँ कब खत्म होंगी।
1: अब ओवरऑल आप बिल्कुल ठीक है?
0: यस, मैं पूरा एकदम स्वस्थ व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ।
1: कभी कोई कमी महसूस होती हो क्योंकि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है? जब लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं आपको लगता हो कि शायद मैं नहीं कर पाऊँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: जैसा कि ट्रांसप्लांट होने से पहले ऐसी कुछ बातें थीं या ऐसी कुछ चीज़ें थीं जो मैं नहीं कर पाता था। जब से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट, उसके बाद पॉजिटिवनेस इतनी बढ़ गई है माइंड में। या तो ट्रांसप्लांट जिसका हार्ट मुझे लगा है उसकी थिंकिंग ऐसी रही होगी कि वो किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेता होगा अपनी लाइफ में, तो मेरा भी अब ऐसा ऑटोमेटिकली माइंड में ऐसा आता है कि कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है, सभी काम मैं कर सकता हूँ, भाग भी सकता हूँ, दौड़ भी सकता हूँ, किसी भी तरीके का खेल खेल सकता हूँ।
1: आप स्पोर्ट्स में भी हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं
0: जी,
1: किन किन गेम्स में आप हिस्सा ले रहे हैं?
0: मैं वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में बैडमिंटन में और फुटबॉल में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, देखता हूँ कि कितना आगे मैं जा सकता हूँ। अगर मैं कोई इंजरी, बिना इंजरी के अगर मैं,
1: तो आपको दौड़ने भागने में कोई दिक्कत
0: नहीं? दौड़ने भागने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं, कोई सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है,
1: बिल्कुल पूरी तरह से।
0: हाँ जी, एक नॉर्मल पर्सन की तरह मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ।
1: दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स ओलंपिक गेम्स की तरह ही ये गेम्स हैं जो जिनमें सिर्फ ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स या जिन्होंने अपना कोई अंगदान किया है जिंदा रहते हुए, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि अंगदान कोई अपंगता नहीं लाता। अगर आपने कोई अंगदान किया है तो आप अपंग नहीं हो जाएंगे, अगर आपने किडनी या लिवर का हिस्सा डोनेट किया है, और या फिर आपको कोई अंग मिला है, किडनी, लिवर, हार्ट, इंटेस्टाइन या किसी भी तरह का, तो आप कोई अपंग नहीं है, आप किसी से कम नहीं है, आप वो सब काम कर सकते हैं जो एक नॉन ट्रांसप्लांट पर्सन कर सकता है। आप पेशेंट थे, अब आप पेशेंट नहीं है, आपका नया पुर्जा आपके अंदर लग चुका है और आप बिल्कुल थोड़ी तरह से स्वस्थ हैं। बस आपके जो कटिंग मार्क्स हैं और उन अंगों को चलाने के लिए थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो इन्हीं चीज़ों को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स का पूरे विश्व स्तर पर आयोजन किया जाता है, और हर दो साल में ये गेम्स आयोजित होते हैं, और इस बार ये ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में 2023 में होने वाले हैं। तो इंडिया की तरफ से ऑर्गन इंडिया इंडियन टीम की मैनेजर है, और हम लोग करीब 50 एथलीट्स को अलग अलग खेलों में पार्टिसिपेट करवाने के लिए यहाँ से लेके जा रहे हैं, जिसमें राहुल भी एक पार्टिसिपेंट है, और राहुल दो गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मन बना चुके हैं जिसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं हमारे श्रोताओं और ऑर्गन इंडिया के परिवार से, राहुल हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में जाएं और इंडिया के नाम रोशन करके मेडल जीत कर लाएं।
0: जी, तो मैं ये कहना मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑर्गन इंडिया का, मानव रचना यूनिवर्सिटी का।
1: तो जी बिल्कुल, राहुल एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे देश में कई भ्रांतियाँ हैं अंगदान को लेकर, कई रूढ़िवादिता सोच जो है हमारे समाज में फैली हुई है अंगदान को लेकर, आपने इस सब चीज़ों को बहुत करीब से देखा है और आपकी जान बेसिकली किसी के अंगदान करने से ही बची है।
0: जी जी,
1: और जैसा कि मैं भी देख सकता हूँ और आप भी महसूस करते हैं कि आप टोटली एक न्यू लाइफ जी रहे हैं मौत के मुंह से निकल के।
0: yes,
1: तो ऐसे लोगों को जो अंगदान को अच्छा नहीं मानते या उसको सपोर्ट नहीं करते या उसके उससे हिचकते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जो लोग अंगदान करने से हिचकते हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अंगदान नहीं करेंगे, अपने ही घर के व्यक्ति जो कि किसी ऐसे कारण से इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, जो बिना किसी समय के उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे आदमी का

0: जो अंगदान है वो हमेशा करना चाहिए, और अंगदान में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अंगदान से एक अपने ही बच्चे का आप किसी को अंग अगर देंगे तो दूसरे व्यक्ति में वो, जैसे कि मेरे अंदर हार्ट किसी दूसरे व्यक्ति का चल रहा है, तो डोनर फैमिली को इस चीज़ का भरोसा है कि हमारा बच्चा अभी भी राहुल के अंदर जिंदा है।
1: बिल्कुल
0: जो भी डोनर फैमिली होती है उनसे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये डिसीजन सही समय पर लिया और मेरी भी जान बच पाई। तो आम आदमियों को भी मेरा यही संदेश रहेगा कि अगर किसी के घर में, पहली बात तो किसी के घर में ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान का ये सब किया हुआ है कि कभी भी किसी के साथ कुछ होता है अगर, तो अंगदान में किसी भी प्रकार का संकोच ना करें और दिल खोल के अंगदान करें।
1: बिल्कुल जी, धन्यवाद राहुल जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और हमारे लिए समय निकाला। तो दोस्तों, ये थे राहुल और हमने इनकी कहानी सुनी कि कितनी सेंसिटिव, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी परेशानियां झेलकर और आज एक बिल्कुल हेल्दी लाइफ सिर्फ इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि किसी ने अंगदान किया, किसी ने अपना दिल इनको डोनेट किया। और सिर्फ दिल ही नहीं, आई एम श्योर कि उनके अदर ऑर्गन्स, किडनी, लिवर, वो भी डोनेट हुए होंगे। और बहुत सारे राहुल की तरह ही बहुत सारे लोग होंगे जिनको उस डोनर फैमिली के एक हाँ कहने से दोबारा ज़िंदगी मिली।
0: जी बिल्कुल
1: बिल्कुल। तो मैं भी आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप अंगदान बारे में जानें, इसके बारे में जानकारी एकत्रित करें और फिर अपना मन बनाएं कि आपको ये करना है या नहीं करना। बिना जाने इसको हाँ भी ना कहें, इसको ना भी ना कहें।
0: जी।
1: एंड अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं अंगदान के ऊपर तो आप www.organindia.org को विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। अगले एपिसोड में मैं जल्दी ही हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर और कुछ नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।
2: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंगदान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे, इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
1: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार और लेसी सिंह सहित कई अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो कर रहे हैं। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। कल भी विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और पार्टी विधायकों की सूची तथा कांग्रेस का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसीके नेता थिरुमावलन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे कभी तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे नहीं झुके। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। राष्ट्रपति तो लाम आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0: से मुलाकात करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 345 अंक बढ़कर 78,304 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो ए हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं,
2: मानो या ना मानो तुम।

नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज

0: के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है, कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इसे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान कमाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अचानक।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए श्रोताओ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशी दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की। धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं।
2: मानो या ना मानो तुम,

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117091. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इसे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान कमाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट। हर धड़कन अनमोल है, इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे। बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अचानक।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेके माटी दी महक। श्रोताओं कर दिन कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने तो हाँ सारे ही नहीं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी

तुहां सारें दा रेडियो गुंजन धर्मशाला इन्हें तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक आशो तो बढ़ते कार्यक्रम चल गए इन्हें सुनते निक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहां सारे ट्यून कित्ते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चले है माटी दी महक श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक तो श्रोताओं बढ़ते ने कार्यक्रम च अगे कने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि करने ता श्रोताओं बढ़ देने कार्यक्रम चग गए कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दे ना माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तो श्रोतों बढ़ते न कार्यक्रम च अग्गे कने सुनदे ने इक और प्यारा दिया गीत।

आ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहां सारेयां ट्यून कीते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है माटी दी महक। श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 MHz पर। तो हाँ सारे ट्यून कित है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने। तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक। तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहा सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारे कार्यक्रम सुनांदे थे माटी दी महक। कहां श्रोताओ अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही। तो तोहा सारे ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने पर।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं,
2: मानो या ना मानो तुम।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इसे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान गंवाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अचानक।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं,
2: मानो या ना मानो तुम।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इसे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान गंवाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

नमस्कार श्रोतो, FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर बुझको तुंदे सभी रे रेडियो सेट में कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रे सभी श्रोतागण। कैसे हैं तो है सब, उम्मीद कर दें तो है सब ठीक बुने और उम्मीद है भी आके तो है सब बढ़िया बुने फर्स्ट क्लास बुने और उम्मीद है भी आके तुसु अपना प्रतिनिधि किया सो वफादार चुनना हा, तुसु अपना प्रतिनिधि किया सो ईमानदार चुनना हा, तुसु अपना उम्मीदवार जो हा सो सच्चा चुनना हा, तुंदा सभी रे उम्मीदवार किया सो ऐसा बुना चिंदा जो तुसु एरे करे मुँह ना फेरा या तुसु एरे करे ना बल्ला कि आऊँ घरे ने आऊँ घर खबार यानी कि तुंदा कम्मा जो किया सो ना ना करा श्रोताओं को, जो कि तुंदा आका के वोट किया सो बहुत कीमती हा, ता जरूर वोट पाना किया सो जरूर गन सब श्रोता। और उम्मीद भी ये करन कि तुंदा जो उम्मीदवार आ जैसे तो है वोट पाओ सो जितने अच्छा और तुंदे सहयोग में किया सो 5 साल दिया अगले इन्हीं आले तुंदे सोगे की असो 5 साल दिया है ना जी। तो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो सब ये ट्यून कर रहा और हूँ सचिन कपूर हा कार्यक्रम में तो सब हूँ कर देने सचिन कपूर सोगे लाइव तो है भी इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं ना अज कि श्रोता जुड़ गया ना 7088879 पर कॉल करे करे नंबर हक मौके फ्री तो हो गया है रिपीट कर दें तो सोगे साझा कर दे 7088879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत भी होने सकते हैं और सोगे सोगे बिल्कुल चर्चा चुनाव रे या चुनाव संवाद रे या तो है चुनावी बेला मंच भी किया सो अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं और ईवन कि असू दस सकते हैं श्रोताओं की तुसु के लगता कि तुंदे क्षेत्र थों किया सो आज़ाद उम्मीदवार सही खड़ुआ या कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार गया सो सही खड़ेरुआ या फिर बीजेपी पार्टी वाले गया सो उम्मीदवार सही आ, जो जनता रे राया सो तिनिया तक उम्मीदवार तक किया सो जरूर पुजने आशतों तो सब कॉल कर सकते हैं 7088879 पर। थोड़ा करी समय जरूर लगता हूँ, पहले भी बोलता कि हल्का ना समय की ऐसा जरूर लगता है कॉल कनेक्ट बनते है ना। तो यह कार्यक्रम जो आगू बढ़ा है धर्मशाला ना मौसम जान लेंदन जी, इस समय 17 डिग्री सेल्सियस तापमान है, नमी की गल करूँ तो 57% किया सो नमी है इस समय। ताइए जी आगाज जरूर कर दें कार्यक्रम रे इस प्यारे दे गीता सोगे और फिर तथों बाद छोटों तुंदे सभी री फरमाइशा भी जरूर पूरी कर ले।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला दो है ट्यून गुड रहा और कार्यक्रम सचिन कपूर सो गे होने कर देना यह कार्यक्रम जो होगा बढ़ देन और कार्यक्रम मंच अब अगले श्रोता जो कर देन कनेक्ट तो सुसोगी अगले के पहले को जो कि दो त्राई और श्रोता कनेक्ट हुए ना सोगे लेकिन सो या कि हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार जी
1: नमस्कार सर क्या हाल चाल जी
0: बहुत बढ़िया जी तो बल्ला तुम देखे हाल चाल
1: बहुत बढ़िया जी
0: अच्छा कौन बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू देन
1: संजू बोला था जी मैं बोला था रिलू पुल वाले थे जी
0: अच्छा अच्छा और ठीक ठाक
1: बढ़िया जी बढ़िया जी
0: तो नोईता जी कुछ
1: नवीता जी क्या था जी होना बरखा बुरखा होती है जरा
0: हां
1: जी फसला फुसला था जरा बंदे बड़ा देखता अंबर नहीं छड़ा था पीछे हूं
0: अच्छा
1: हां जी
0: चले जी कुंडल की थोड़ा तुसु
1: जिंदगी सोहनी है जी
0: जिंदगी तो बड़ी खूबसूरत है जी
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: है ना जी
1: सिकवे की कर गए
0: सिकवे तो करने नहीं
1: हां जी हां जी
0: और मुझे लगता है मुझे लगता कि बैठ हूं बात तो कोई सिकवा बुना नहीं चिंता जिंदगी में
1: बिल्कुल जी हां जी हां जी
0: है ना
1: हां जी
0: चलिए ठीक है जी जरूर मना ले तो सुएगी धन्यवाद इंदर अगले श्रोता सुगी कनेक्टेड हैं हेलो नमस्कार जी
2: नमस्ते सर जी नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठाक
2: बस बढ़िया सर जी ठीक ठाक जी या तो सर ठीक ठाक सर जी
0: बढ़िया जी बढ़िया कौन बल्लूंदन और कड़ी थो बल्लूंदन
2: कोठिया जिलोटे बोले सर जी सुनील कुमार
0: अच्छा अच्छा सुनील कुमार जी और ठीक ठाक हैं राजीव जी ना जी
2: हां जी सर जी बढ़िया सर जी
0: जी सुनील जी कुंडल की थोड़ा तुसु
2: एक गाना सुनाई ना सर जी मैं जो गदियाड़ी सॉन्ग सुनाई दिया
0: अच्छा गदियाड़ी कोई भी हुन लेना तुसु
2: एक गाना है सर जी मैं जो बिच्चे दा याद होदा
0: अच्छा
2: बुढ़ा हो या वो सियाणा स्वामी
0: क्या बात है
2: सिंगर कौन है सर जी इस गाने
0: विजय विजय कुमार विजय कपूर सिंगर हैं जी
2: बहुत अच्छा गाना सर जी ये था
0: जी बिल्कुल ये थोड़ी करी हकीकत की है ना सो बयां कर रहे इस गीत अंदर
2: हां जी बहुत अच्छा गाना लग रहा सर जी मुझे
0: हां जी जना शरीर
2: बुढ़ा रहा सारे गति वाली बिल्कुल अच्छे गाने कोई ऐसी दिक्कत नहीं
0: जी जी जी अच्छा तो तू है कड़ी पहली बार गदयाली बोली कि ऐसा होने थे जी जो तू सो इतनी समझ भी चले इंदे सिर्फ बलना ने इंदे
2: दिखा ना मारे चंगा क्षेत्री जिया गद्दी भाई होंगे जिया भेड़ बकरियां पाने जिया मतलब गल बात
0: अच्छा
2: इन्हें थोड़ी बहुत सीखी ली है सर जी हाँ
0: अच्छा अच्छा
2: हाँ जी हाँ जी दान बकरियां लेके आते हैं ना सर जी जिया मारे पट्टिया पुट्टिया बेही जाना डेरे जाना डेरा लाई लेना समझे थे ना
0: अच्छा
2: हाँ जी
0: बड़ा प्यारा गीत है बुढ़े भुए वो स्वामिया सियाने वो स्वामिया चलिए जी जरूर होने ले तो सुए गीत ना जी
2: धन्यवाद सर जी नमस्ते
0: धन्यवाद जनाब धन्यवाद
2: नमस्ते सर जी
0: FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन री गूंज सो गीत वे बन रहे ना हूँ सचिन कपूर है बिल्कुल लाइव कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है आइए इन देख ले श्रोता हसुगी कनेक्टेड हैं उस दिन कौन बोल लूँ नमस्ते जी
3: नमस्ते सचिन जी
0: नमस्ते जी नमस्ते
3: और किने हाल चाल क्या
0: बस जी बढ़िया तो दस तुम देखे हाल चाल न
3: इंदा भी ठीक है
0: कौन बल्लूंदन और कड़ी तो बल्लूंदन जी
3: हाँ दारनू था बड़ू पंडा हर सिंह जी
0: अच्छा अच्छा दारनू तो हर सिंह जी तब बड़ी पाई कणका कुणका तो है कि ना
3: कणका ता से तो बहु रही ना कणक मैं तो बहु रही ना कणक
0: ना तो तुम दे पड़ोसी दारनू वाले सब
3: दारनू वाले तो बहु रही है बरखा पे गए छुकंदे तो बड़ नहीं क्या कणक तो पक्की छुरी है
0: बिल्कुल बिल्कुल अच्छा
3: रोज बरखा पे कर देता फिर सो कान के की वरने
0: क्या वरने मुश्किल था काम अच्छा जी पहले तो दस दे की कुंदन गीत होना तत्थो बाद कुछ गल कर दें तो सोगी फिरे
3: गीत सोना मेला ते थल्ले थल्ले जान दे आवे
0: अच्छा चलिए ठीक है जी जरूर होने ले तो सोएगी तो के है तुंदे कनारी चुनाव री क्या चर्चा बच्चों कर दिया
3: ਚਨਾਵ ਤਾਲੀ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਹਾਲੇ
0: ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਪੈਂਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਾੜ ਨੂੰ
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 12 ਦੀ 12
0: ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਾਰੀਓ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋ ਵੀ ਖੜੂ ਰਹੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀਲਾ ਠਾਕੁਰ ਆ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਆ ਸੋ ਖੜੂ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ
3: ਚਲੇ
0: ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਹਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਤੁਰਾ ਕੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਟੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
0: ਬਈ ਬੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਆ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਜਸ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਥਾਂ ਮਿਲੋ ਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਔਰ ਸਭ ਸਿਆਣੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਰਾ ਬੋਲਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੀ ਜੀ ਆਉਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਆਸੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਖੜੂਰੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਆਸੋ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਆਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ
3: ਕਿ
0: ਕੌਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੂਰਾ ਕੌਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿ ਆਸੋ ਨਾ ਖੜੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਜੋ ਵੋਟ ਮਤਲਬ ਸੋ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁੰਡਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰੇ ਕਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰੇ ਕਰੇ ਪਿੱਠ ਨਾ ਗੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖਾ ਦੁੱਖਾ ਮਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਸਾਥ ਦੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜੋ ਪੋਸਟਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਧੀਆਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਚੈਨ ਕਿ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ
3: ਸੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ
0: ਜੀ ਜਨਾਬ
3: ਮੇਰਾ ਤੱਕਣਾ ਮੋਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੱਕਣਾ ਲੱਗਣਾ ਪਤਾ
0: ਹਾਂ ਇਹ ਇਹ ਕੀ ਕਸ ਕਨਾਰੀ ਗੰਦੇ ਆ
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁੰਡਣ ਗੀਤ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈ ਤੋ ਹੈ
3: ਗੀਤ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮਹਿਲਾ ਥੱਲੇ
0: ਥੱਲੇ ਬਹਾਦੁਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਰਹੇ ਗੀਤ ਚਲੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਲੈ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ
3: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ
0: ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜ ਨੂਰੀ ਜਨਤਾ ਜੋ ਵੀ ਨਮਸਤੇ ਸ਼ੋਧੋ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 91.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਪਰ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਰਿਗੂਨਸ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਸਭ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਨ ਚਲੀਏ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆ ਸੋ ਜਿੰਦੇ ਇੰਦਾ ਇਹਦਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਤਾ ਸੋ ਗਏ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹਨ ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਨਮਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਿਉ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
4: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਫੋਨ ਸੁਣਾ ਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲੂਟੁੱਥ ਪਰ
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ
4: ਠਾਕੁਰ
0: ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਮੀਦ ਆ ਫੁੱਲ ਕੇ ਹੱਥ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ
4: ਉਹ ਸਰ ਖੈਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਈ ਨਾ ਨਾ ਬਲੀ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ
0: ਅੱਛਾ
4: ਅਸੀਂ ਜਾਪੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਆਂ ਜੀਆਂ
0: ਚਲੀ ਤੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾੜੀ ਮਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਰਹੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਆ ਬੁਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸੋ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ घट बुंदी ने इन चीजा रखी सो डेवलपमेंट बुना चाहिए इतना करी तो आई थिंक
4: इस बारे कुछ बल्ली ना सकते ना।
0: अच्छा अच्छा
4: इंद्रदान सब सब बराबर ना क्या बीजेपी के कांग्रेस सब इंद्रदान
0: ना ना आओ बीजेपी के कांग्रेस की गल ना करूंगा ना अजीत आजाद कैंडिडेट की गल करूंगा आओ गल करूंगा कि तू है क्या चाहते कि तुम क्षेत्र में क्या है कि असो मूलभूत सुविधाएं अब बुना चिंदी और बुना चिंदी और दाड़ी के असो ग्रो करा सो तू दस सकते कि आम
4: जी सो तो तुम गल सही डेवलपमेंट जितनी बहुत अच्छी घाट है ना
0: जी जी जी पर अगर तो है जी अगर तो है ना मतलब अपने कुछ बले सकते हैं दाड़ी वास्ते तो कोई दिक्कत नहीं है जनाब तो गीत दस सकते ने उन्ना तुसु
4: गीत तो है तो है बरमोरी गाना सुना जा कोई बजी हां जी सिकली करो रहो ना तो फिर
0: अच्छा अच्छा
4: के ना
0: मुंजो बरमोरी
4: आई बरमोरी मुंडे वाला सुना जा
0: मुंजो भरमोरी
4: भरमोरी का मुंडे हां
0: का मुंडे है ना जी
4: हां जी हां
0: चलिए ठीक है जी धन्यवाद। एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गेंद सो चल रही चलिए जी लगातार कॉल्स के ने सोच कर दी हिन और बिल्कुल चुनावी बेला था कॉल सीना भी किया सो बिल्कुल जाहिर दे गल लगी कॉल था इनी इनी ने चर्चा तो भूणी या संवाद तो भूणा ही भूणा जनाब लेकिन इस बीच हिंदे जो श्रोतागण तैयारी फरमाई सकन अगर सो कस की भी अधूरी रह गंदी तो जनाब तो है बुरा मत बंद है जो कि बेला चुनावी है और चुनाव रा प्रचार जोरों शोरों सो गया सब जगह वीडियो गुंजन और इंदा कार्यक्रम को पूछूँ रिया फिर हेलो
5: हेलो
0: नमस्कार जी
5: नमस्कार भाई
0: नमस्ते जी नमस्ते
5: क्या हाल चाल
0: बहुत बढ़िया जी तो है बल्ला दुंदा क्या हाल चाल है
5: ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ
0: ਆ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕੌਣ ਬਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਬਲੁੰਦੇ
5: ਨੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਲਖਣੀ ਆ
0: ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ
5: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਅਲਖਣੀ ਤੋਂ
5: ਹਾਂਜੀ
0: ਕੀ ਬਾਤ ਕਦੇ ਅਲਖਣੀ ਦਾ ਮੌਸਮ
5: ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਇਹ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਕੋਈ
0: ਕਦੀਓ ਪਿੱਡਾ ਕਰਾਈ ਸੀ
5: ਬਹੁਤ ਦਾ ਗਰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਾ ਗਰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਆ
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਲਖਣੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੰਬੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪੁੱਛੂ ਪੇਗਰ ਖਾ ਹਰ
5: ਜਦਰਾਂਗਲਾ ਉੱਪਰ ਚਮੰਡਾ ਉੱਪਰ
0: ਅੱਛਾ ਅਲਖਣੀ
5: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤਿੰਦੇ ਬਰਮੋਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲਖਣੀ ਇਹ ਮਿੰਜੋ ਆਕ ਮੋਕੇ ਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝਲ ਲੈ ਤੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੜੀ ਨੇ ਪਈ ਹੈ
5: ਇਹ ਜਦਰਾਂਗਲਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਰਾਂਗਲ ਦਾ
0: ਹਾਂਜੀ
5: ਮਾਨੀ ਚਮੁੰਡਾ ਕੰਧਾ ਰਸਤਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ
0: ਅੱਛਾ ਕੰਡ ਕੰਡੀ ਵਾਲੇ ਰੇ ਪਾਰ
5: ਕੰਡ ਕੰਡੀ ਆਣਾ ਰੱਖਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਏ ਆ
0: ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਏ ਤੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁੰਦੀ ਕਿਨਾਰੀ ਕੀ ਆ ਚੁਨਾਵੀ ਬੇਲਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ
5: ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ
0: ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ
5: ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ
0: ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦੇ अच्छा काय गवाई थी सिप्पू प्रधान ने जान दसा जरा
5: वोटा ना गवाई मने
0: कटेरे ताए वोटा ताए
5: हां जी
0: अच्छा मतलब सिप्पू प्रधान की सो जीतू ना तो
5: समझ में नहीं पता
0: सिप्पू ने आई थिंक सित्तू सित्तू प्रधान आए
5: सित्तू लो
0: हां चलिए ठीक है जी
5: ठीक है जी
0: धन्यवाद बहुत सारी कॉल्स कैंसिल इच्छू कर दें चौथा और मुझे भी बड़ा मजा इच्छू करता जहने भी इस तरीके की चीज़ बनती ना हूँ बेशक कितना भी थकुरा बच्चों खिजुरा बच्चों दिमाग मानसिक संतुलन मेरा कितना भी हिलरब हुआ लेकिन जहने भी इस कुर्सी पर बैगन दूँ और इस हथा मंझ माई के पकड़े लेनू आता एनर्जेटिक के किया सो आऊँ ऑटोमेटिक ही पूछे गन्नू अंदर हाथों ही पूछे गन्नू बहरहाल चल देना और जिंदगी सोनी जो बेहतरीन बना।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपने गप्पा ज्ञान से चल रही हैं। चलिए चलते रहूँ और कार्यक्रम में हिंदी अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी, वेड़ी गुंजन मा स्वागत है।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते जी। कौन बल्लू दे और कड़ी थो बल्लू कर दे हिन?
1: मैं पायल दे निशाना थे।
0: पायल जी क्या कर देन तो है, कुन दिन क्लास में पढ़ देन का स्कूल है पढ़ देन?
1: मैं डीएवी 8वीं क्लास का छ।
0: अच्छा पायल जी, क्या सोच दे इनकी फ्यूचर मा क्या करना है, कुन दिन स्ट्रीम की सोच चुकने हां, यानी कि कुन दिन सब्जेक्ट की सो रखना तो सु आफ्टर 10th?
1: हां जी,
0: 10वीं थाओ बाद क्या रखना तुसु, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, क्या सोच रहा कुछ क्या लेना?
1: अली कुछ नहीं सोचे है।
0: अच्छा चलिए ठीक है पायल जी, कुंडने की थोड़ना तुसु
1: डकड़ू खतरने दा।
0: अच्छा चलिए ठीक है जी, जरूर होने ले तुसु ये गीत।
1: ठीक है जी, धन्यवाद।
0: धन्यवाद। अगले श्रोता सोगी कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी, वेड़ी गुंजन मा स्वागत है।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार।
2: ठीक ठाक है?
0: बहुत बढ़िया जी। तू है भला, तुंदा क्या हाल चाल?
2: बहुत बढ़िया जी।
0: करे लुगरिन
2: बस अंदर खाने के लिए
0: कर लुगरिन जी,
2: मैं लोग खाने पीने का उन लोग मन लो अपने को फोन देंगे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। और नोएताजी?
2: नोएताजी कोई नहीं पता क्या बंदे सचिन जी
0: ना कि नहीं नोएताजी अबे ना नोएताजी तो कहने भूने अबे तो नोएताजी या इतने भरे प्रधान नतंदी पंचायत थो उप प्रधान हिन वार्ड पंच हिन बीडीसी मेंबर इतने इतनी नोएताजी अबे था
2: ताकत की बारे बंगाल तो ये भाई सुगली बनाएंगे सकते हैं उनको ना।
0: चलिए जी, मंच तुम अपना और अपना कार्यक्रम अपना मंच दितुरो तुस वो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया था, कोई ना बल्ले सकते तो बल्ले सकते न। बिल्कुल। और क्या समझ रख देन तो है कि तुम दा कदे कदे उम्मीदवार बोआ कैंडिडेट बोआ
2: सीधे काम करने आ रहा बहुत बढ़िया मजेदार मनो बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहा है अगली बार फिर प्रधान काम करने वाले
0: अच्छा काम करने वाला बुआ बस है ना जी।
2: हां जी हां जी अच्छा काम करने के अगली बार जरूर से किया सवारी अगली बार फिर तुम ना पर प्रधान साहब नहीं अच्छा काम करने से ये जरूरी नहीं कि तिया अखबारे बनना अच्छा काम करने वाला दोबारा फिर बनेगा दोबारा का जी प्राइस पर पांच बार बनी सकते अच्छा काम करने वाला बोलते नहीं
0: बिल्कुल बिल्कुल लेता जी
2: जी नहीं अच्छा काम करने
0: बस आप मौके की सो खड़ी ने रहा मौका मिलना चिंता है ना जी।
2: जी जी खड़ी ने मौका मिलना चिंता था काम तो करना है वो खड़ी ने तमाम खड़ी करना हाँ टिकट लाने ना
0: बिल्कुल बिल्कुल आजाद भारत रहा रहा लोकतंत्र है ना जी।
2: जी जी
0: कोई भी खड़ी सकदा कुछ ही कोई फोर्सफुली ना बल्ले सकदा ऐसा चीज जरे बारे खास कर
2: ना सचिन जी तो कहना खड़ी गया तुम अपने बाप भी तो अपना जान गए किसी ग्राम से बाहर बल्कि हम अपने लिए ठगना जैसे ही जान गए दाग लग गया ढाई का मारे
0: जी। मेरे कुछ और प्लान्स ने वैसे चलिए बलना तो नहीं चाहिए पर सोच रहा अगले पांच साल बाद आऊं भी शायद उम्मीदवार बनी सकता हा। फिर बुझो भी तुरे गैंड गैंड क्वेश्चन बोले जी आऊं इस भाई मुंह करने मनु हो गए।
2: जी जी
0: हाँ जी
2: ठीक
0: ना ये मेरा दावा और वादा तुस होगी कि अगले पंद्रह साल बाद के सो मु पक्का खड़ी ना ये तो है तो है हौसला देता तो है पहली बार मेरे दिमाग का ये गल पाए थे था। और भी बहुत सारे लीडर क्या निंद है जो प्रधान हैं जो बीडीसी मेंबर रही चुकरे ने और भी बल देने इस चीज अरे बारे हैं कि तो है कोनो खड़ी है पर इस बारी चलो सब
2: काम चलाना चाहिए कल की मतलब तो जान पहचान और लगभग किसी और सब चीज का जानकारी है
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, तुहे बल्लो और तुहे बल्लो अता है अगले 5 साल बाद जरूर सोच ले इस विषय बारे। ना जी, इस बारी तो बिल्कुल भी ना, ना इस बारी तो इस बारी हुए बड़े बड़े न प्रधान उप प्रधान गौट रहे था
2: बनना जे तन के सब एक वक्त से ना तो सर ना सतनी की आदत तो मत बना जे इन जा ग्राम त्राई पूरी पानी से आज ना बल से ना तो ये आ गए बे गच्छा ना कक्ष बना अगर से कक्ष आ तो बने गा बे गच्छा ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बे जमाना तो सो पता था कि थोड़ा करे फाइटिंग ता रेंदे या है ना जी।
2: जी जी जी, और फाइटिंग में मजा बस है कि फाइटिंग में जल्दी आज में सबके पता लगना ये कोई काम करना है तो कि बोल पाओ बनो है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जी अह तो सेवा करू कर दिन या भी सेवा और हुए भी सेवा या जी जनाब कुन दिन गीत थोड़ा पसंद कर ले
2: सतनी जी। सो गीत हो जाए तेरे ताई सजी दा जी आए का गीत
0: तेरे ताई सजी दा जी आए।
2: हां जी हां जी,
0: अच्छा चलिए ठीक है जी, जरूर सुन ले गीत।
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद जी। चलिए शो तो फरमाइश का दौर की सो भी धीरे धीरे पूरा कर दें कचो की अबे फरमाइश दे रहा हूँ इंदे आकर।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

पर नहीं समझ आता। बेवजह सड़क दुर्घटना में जान गंवाना, तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है, इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ। श्रोताओ आपसे लेकर 8 बजे तक रहेंगे आपके साथ, करेंगे आपका मनोरंजन, जानकारियां साझा करेंगे आपके साथ और साथ ही साथ बातचीत का भी आनंद लेंगे। श्रोताओ कार्यक्रम में आइए सबसे पहले जानते हैं इस वक्त धर्मशाला का तापमान। 12 डिग्री सेल्सियस तापमान है और वातावरण में नमी है 73% और हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो कई स्थानों पर इस समय हो रही है। श्रोताओ कार्यक्रम में आपके साथ बातें भी करेंगे, जानकारियां भी साझा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन के लिए प्यारे प्यारे से गीत चुन करके आज हम लाए हैं। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में इस प्यारे से गीत के साथ।

0: श्रोतों, साजन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज़ में। और साजन 1990 के दशक की, श्रोताओं, वो फिल्म थी जिसकी कहानी भी और जिसके गीत भी आज दिन तक हर किसी की ज़ुबान पर और जहन पर अभी भी चढ़े हुए हैं। और 90 के दशक के गीतों की बात ही अलग थी श्रोताओं, उसके हर गीत के बोल, हर गीत के लिरिक्स हर किसी के जहन में उतर जाते थे और गुनगुनाते गाते हुए हम उन गीतों को याद कर लेते थे। ऐसा ही था वो दौर। 90 के दशक के और भी गीत आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे श्रोताओं, आप बस बने रहिए हमारे साथ यूं ही 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब कार्यक्रम में समय है आपको आज का विचार सुनाने का, तो आइए सुनते हैं आज का विचार। जिंदगी एक अनमोल सफर है, इसे खुलकर जीना चाहिए। उतार चढ़ाव भरी राहों में धैर्य रखने और हर पल का आनंद लेने का नाम है जिंदगी। जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी अनमोल सफर है और खुलकर जीना चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ावों में हमें विचलित नहीं होना है, धैर्य बनाए रखना है और जिंदगी के हर पल का आनंद हमें लेना है। और अगर जिंदगी के हर पल का आनंद लेना हमें आ गया, तो हम सही मायनों में अपनी ज़िंदगी का जो ये सफ़र है, अनमोल सफ़र, इसे खुल कर जी पाएंगे और ज़िंदगी को हम अपने उन अंतिम दिनों में कह सकते हैं किसी शिकवे और शिकायत के बिना ये कह सकेंगे कि हमने ज़िंदगी को भरपूर जिया है और ज़िंदगी का पूरा पूरा आनंद हमने लिया है। तो ज़िंदगी को खुल के जिए, इस अनमोल सफ़र का आप सभी आनंद उठाएं। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं श्रोताओं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।
1: That's right.

श्रोतो, सलामे इश्क फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज में 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ, आज है 7 मई। क्या कुछ खास रहता है आज के दिन, इसके बारे में भी आइए जानते हैं। 7 मई विश्व एथलेटिक दिवस, ये खास दिवस आज के दिन मनाया जाता है और इसका उद्देश्य युवाओं को ट्रैक एंड फील्ड खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 1996 में ये शुरू किया गया। ये दिन स्कूलों और कॉलेजों में खेल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन है। श्रोताओ, विश्व एथलेटिक दिवस क्यों शुरू किया गया और क्या है इस दिन का महत्व, इसके बारे में कार्यक्रम में हम आगे और भी जानेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

1491.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और अब रुख करते हैं जानकारियों की ओर। अधीक्षक डाकघर धर्मशाला रविंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्मशाला डाक मंडल में गत वित्तीय वर्ष के दौरान डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा की कुल 8,557 नई पॉलिसियां खरीदी गईं। इन पॉलिसियों की कुल बीमित राशि 318 करोड़ रुपए तथा प्रीमियम राशि 4.74 करोड़ रुपए रही। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष 1,033 प्रस्ताव अधिक प्राप्त हुए हैं, साथ ही प्रीमियम राशि में 1.33 करोड़ रुपए तथा बीमित राशि में 88 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। दावों के निपटान के संबंध में उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 3,208 मैच्योरिटी क्लेम का भुगतान किया गया है, जिनकी कुल राशि 61.74 करोड़ रुपए रही। इसके अतिरिक्त गत वर्ष 71 मृत्यु दावों का निपटारा किया गया, जिनकी कुल दावा राशि 1.44 करोड़ रुपए थी, जबकि इस वर्ष 87 मृत्यु दावों का निपटान किया गया, जिनमें 1.89 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया। अधीक्षक डाकघर धर्मशाला ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे डाक विभाग की बीमा योजनाओं को अपनाकर अपने एवं अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाएं। श्रोताओं, ये थी जानकारी 91.2 MHz पर। आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

शोधो 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं, वक्त है अब छोटे से अंतराल का, यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपनेपन की।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में अब लीजिए आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का, हम तुम पे मरते हैं। जी हाँ श्रोताओ, ये है फिल्म का नाम और इसी फिल्म का गीत आप सुनने जा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में।

श्रोताओं, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम में फिर से चलते हैं जानकारियों की ओर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला कांगड़ा के सचिव आर मयूल शर्मा ने बीते कल आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष लोक अदालत में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति, संवाद एवं सुलह के माध्यम से निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार समाधान समारोह 2026 अभियान अप्रैल 2026 से प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न चरणों में लंबित मामलों की पहचान कर पक्षकारों के मध्य सुलह एवं मध्यस्थता की प्रक्रिया चलाई जा रही है। आर मयूल शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत राज्य, जिला, तहसील एवं उच्च न्यायालय, विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा मध्यस्थता केंद्रों में प्री सेटलमेंट एवं सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक पक्षकार व्यक्तिगत रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से भी इन बैठकों में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा सहित राज्य स्तर पर नामित नोडल अधिकारी एवं विधिक सेवा संस्थाएं इस अभियान के सफल संचालन हेतु कार्य कर रही हैं। कांगड़ा जिला में भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों में संबंधित पक्षकारों को संपर्क किया जाएगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी। 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और एक और जानकारी श्रोताओं आपके साथ साझा कर रहे हैं, निर्वासित तिब्बती सरकार में लगातार दूसरी बार सिक्योंग के पद पर चुने गए पेपा सेरिंग आगामी 27 मई को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा सिक्योंग के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मठ चुगलाखांग में आयोजित किया जाएगा। ये समारोह परम पावन 14वें दलाई लामा की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। सीटीए के एक प्रवक्ता तेंजिन जिंगमे ने बताया कि शपथ समारोह 27 मई को सुबह 8 बजे शुरू होगा। इस मौके पर परम पावन दलाई लामा मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। वहीं इस दौरान विदेशों से भी विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और सीटीए के अधिकारी और आम तिब्बती भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि सिक्योंग के लिए 2 चरणों में भारत सहित विभिन्न 27 देशों में रह रहे तिब्बतियों के लिए मतदान का आयोजन किया गया था। पहले चरण का 1 फरवरी 2026 को हुए चुनावों में ही पेपा सेरिंग के पक्ष में 61% से अधिक मतदान से उनका और दूसरी बार सिक्योंग पद के लिए चयन हो चुका था। हालांकि बाद में अप्रैल में दूसरे चरण के मतदान में भी उनकी जीत सुनिश्चित हो गई थी। इससे पूर्व डॉक्टर लोबसांग सांगये भी लगातार 2 बार सिक्योंग चुने गए थे। वह 2011 में पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सिक्योंग बने थे। श्रोताओं ये थी जानकारी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत श्रोताओं आपके रेडियो सेट्स पर कभी भूला कभी याद किया। जी हाँ श्रोताओं ये है गीत और सपने साजन के फिल्म से ये गीत लिया गया है अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओ आज है 7 मई और विश्व एथलेटिक दिवस आज के दिन मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं को एथलेटिक्स के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। ये दिवस खेल और शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर जोर देता है। ये युवाओं को एथलेटिक्स में भाग लेने और स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन को एथलेटिक और शारीरिक व्यायाम के महत्व को उजागर करने के लिए खासकर मनाया जाता है। एथलेटिक्स को स्कूलों और कॉलेजों में सबसे लोकप्रिय खेल के रूप में बढ़ावा देना जो शारीरिक शक्ति, आत्मविश्वास और अनुशासन को विकसित करता है। ये दिवस खेलों के माध्यम से एकता, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को भी बढ़ावा देता है। श्रोताओ विश्व एथलेटिक दिवस की शुरुआत 1996 में इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन द्वारा की गई थी, जिसे अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के रूप में जाना जाता है। इस दिन स्कूल और क्लबों में विभिन्न दौड़ जैसे 100 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर की दौड़, खेलकूद और मैराथन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन जो है वो किया जाता है। ये एथलीटों के लिए एक बहुत ही बेहतर दुनिया के लक्ष्य के साथ काम करता है। श्रोताओं आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। सुनते रहिए रेडियो गुंजन, गूंज अपने पन की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय ने बताया कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जाँच में सहयोग करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में एक रोड शो भी किया। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज लोकभवन में तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरला में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट जीती है। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल से भेंट की। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि दोनों नेताओं ने श्रमिक कल्याण और रोजगार के लिए सशक्त डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए सहयोग पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्री रामफल ने भारत के राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के बारे में विशेष रुचि दिखाई है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कुमकुम मोहूत की टीम का सामना चीन से होगा। उधर आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ अंतिम पायदान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में। श्रोताओ आज विश्व एथलेटिक दिवस जो है वो हम सब मना रहे हैं। विश्व भर में ये दिन मनाया जाता है और एथलेटिक्स यानी खेलकूद हमारे शारीरिक गतिविधियाँ और ये जो खेलकूद और शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं ये हमें हेल्दी और फिट रखने में हमारी बहुत मदद करती हैं। तो आप भी इस दिन को ज़रूर मनाएं और ना सिर्फ आज के दिन को बल्कि हर रोज़ थोड़ा बहुत समय निकाल कर जो है अपने शरीर को इस तरह की गतिविधियों में ज़रूर डालें। एथलेटिक्स अगर आप इसमें हैं तो बड़ी अच्छी बात है और अगर नहीं है तो फिर भी हम देखें कि धर्मशाला जो है हमारा बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा छोटा सा शहर है और इसमें हर तरह की हम कह सकते हैं सुविधाएं हैं। स्पोर्ट्स के लिए भी बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे जगह हैं जहाँ पे हम हर तरह की खेल का आनंद उठा सकते हैं। अगर आप में रुचि है इंटरेस्ट है और थोड़ा सा समय निकालते हैं आप तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं जो कि खासकर शारीरिक गतिविधियां हैं उनमें आप जो हैं वो शामिल हो सकते हैं और अपने शरीर को फिट और तंदुरुस्त रख सकते हैं। श्रोताओं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन

धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में आप सुनवाते हैं श्रोताओं आपको कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। बने रहिए यूं ही हमारे साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओ, गुड मॉर्निंग धर्मशाला में भी आपसे मुलाकात होती है, गुड इवनिंग में भी हम आते हैं, तो कभी कभी हो जाता है कि हमारा जो फ्लो है वो इस तरह से बना होता है कि गुड इवनिंग के समय भी हमें गुड मॉर्निंग याद आता है। एनीवेज, इस वक्त आप कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। श्रोताओ, और आज है विश्व एथलेटिक दिवस, ये आज के दिन मनाया जाता है और ये खिलाड़ियों की सराहना करने के लिए भी ये दिन जो है ये खास महत्वपूर्ण होता है। हर टूर्नामेंट देखने लायक बनाने के लिए हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करके जीत हासिल करते हैं, और हम उस जीत के जश्न को उस समय तक याद रखते हैं जब वो जीतते हैं, और चाहे वो देश का नाम रोशन करें या अपनी टीम को जिताएं, हम थोड़ी देर के लिए तो उत्साहित रहते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं होता है, उनके संघर्षों को याद रखना होता है। जितने भी हमारे एथलेटिक्स हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा किए गए जो संघर्ष हैं, उनकी जो मेहनत है, उसी को याद करने के लिए विश्व भर में 7 मई को आज का जो ये दिन है विश्व एथलेटिक दिवस, ये मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य ये भी है श्रोताओं कि ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि हर एक बच्चा, हर एक युवा, हर व्यक्ति प्रोत्साहित हो इसकी तरफ, और जीवन में थोड़ा बहुत समय वो ज़रूर एथलेटिक्स के लिए और फिटनेस के लिए निकाले ताकि वे फिट रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और मेरे साथ कार्यक्रम आप एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, गुड इवनिंग धर्मशाला। और गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में अब आगे लीजिए, सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, 91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ, गुड इवनिंग धर्मशाला। और फिर से रुख करते हैं श्रोताओ जानकारियों की ओर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल के कार्डियोलॉजी हृदय रोग विभाग की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ डॉक्टरों की कमी और दूसरी तरफ मरीजों की बढ़ती संख्या सिरदर्दी का सबब बनती जा रही है। इमरजेंसी में आने वाले गंभीर मरीजों को आईसीयू में ही दम तोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ना तो उचित समय पर एंजियोग्राफी हो पा रही है और ना ही कोई स्टंट की व्यवस्था हो पा रही है। केवल मात्र कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष HOD डॉक्टर मुकुल भटनागर के कंधों पर ही सारा बोझ है। वे OPD के मरीजों को संभालने के साथ साथ कैथ लैब में एंजियोग्राफी या स्टनिंग सहित अन्य टेस्टों को भी कर रहे हैं। डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। डॉक्टरों की कमी के साथ साथ इसका एक अन्य कारण हर वर्ष हार्ट के मरीजों की जनसंख्या में हो रही बढ़ोतरी भी है। श्रोताओ, ये थी जानकारी। और जैसा कि जानकारी आपके साथ साझा की, इसके अनुसार जो है हमारे टांडा हॉस्पिटल में हृदय रोग के रोगियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और डॉक्टरों की इस समय जो है वो कमी है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो डॉक्टरों की कमी की समस्या है इसे पूरा कर लिया जाए, इन पे डॉक्टरों की भर्ती जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र हो और जो हमारे मरीज़ हैं उनका स्वास्थ्य ठीक ठाक हो और जो हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं इस वक्त, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें श्रोताओं, क्योंकि स्वस्थ शरीर होगा तभी ज़िंदगी को जीने का हमें आनंद आएगा और तभी ज़िंदगी वास्तव में ज़िंदगी होती है। और एक बार शरीर में बीमारियां जो हैं वो अपना घर कर लेती हैं तो उसके बाद फिर हमारी जो ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है वो भी बीमारियों को ठीक करने में लग जाती है और सारा ध्यान जो होता है हमारा जीवन जीने को छोड़ करके फिर बीमारियों में उलझा रहता है कि किस तरह से बीमारियां ठीक होंगी और किस तरह से हम लोग जो हैं वो ठीक हो पाएंगे। इसलिए पहले से ही अपने स्वास्थ्य का हमें ख्याल रखना है, अच्छा खाना खाना है और व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए समय जो है वो ज़रूर निकालना है। और आज वैसे भी विश्व एथलेटिक दिवस जो है वो विश्व भर में मनाया जा रहा है और ये दिन हम सभी को प्रेरित करता है कि हम ज़िंदगी में ज़रूर एक्टिव रहें, कुछ ना कुछ इस तरह की गतिविधि ज़रूर करें जिससे कि हमारा जो शरीर है वो फिट और तंदुरुस्त रहे। श्रोताओ, गुड इवनिंग धर्मशाला, इस समय आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ और कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रिंकी के साथ। और फिर से जानकारियों की ओर चलते हैं श्रोताओ। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में CBSE पैटर्न लागू करने की दिशा में शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में आज प्रिंसिपलों की काउंसलिंग का अंतिम चरण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मेरिट नंबर 201 से 330 तक के अधिकारी अपने पसंदीदा स्कूलों का चयन करेंगे। काउंसलिंग शिमला स्थित निदेशालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में दो सत्रों में आयोजित होगी। सुबह 9 बजे से 201 से 300 मेरिट वाले प्रिंसिपल भाग लेंगे, जबकि दोपहर 1 बजे से 301 से 330 तक के अभ्यर्थियों को बुलावा भेजा गया है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा 145 स्कूलों की सूची जारी की गई है, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना है। हालांकि अभी भी 17 स्कूलों में पद खाली हैं, जिन पर विशेष ध्यान रहेगा। इसमें सिरमौर जिला के राजगढ़, सराहन, शिलाई, सौतन, दड़ाहू और नौरधार, शिमला के देहा, बलसन, कुप्पी, टिक्कर, स्पीति, काजा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज जैसे काउंसलिंग फार्म, सेवा प्रमाण पत्र इत्यादि साथ लाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय पर उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी। श्रोताओं, ये थी जानकारी। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और अब आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं विश्व एथलेटिक दिवस के बारे में। श्रोताओं, ये दिवस जो होते हैं ये हमें मनाने होते हैं, लेकिन इन दिनों को सिर्फ एक ही दिन नहीं मनाना होता है श्रोताओं, ये हमारी ज़िंदगी का खासकर एथलेटिक्स या यूं कहें कि व्यायाम और एक्सरसाइज जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल की जो जीवन शैली है उसमें हम लोग जो हैं वो आराम परस्त होते जा रहे हैं, और कई बार समय होने के बावजूद भी हम सोचते हैं कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, और इस तरह से हम छोटी छोटी बीमारियों को अपने शरीर में आमंत्रण देते हैं। और ये जो हल्की फुल्की छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं इन्हें हम फिटनेस के ज़रिए जो है वो दूर कर सकते हैं। तो ज़रूर समय निकाला करें अपने लिए ताकि आप फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। और अब लीजिए आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का।

श्रोताओं, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। और श्रोताओं, आप कार्यक्रम में आनंद उठाइए कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत का, और गीत के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: नामांकन। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अद्भुत शौर्य और साहस के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को नई परिभाषा दी है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने आज भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य, पेशेवर दक्षता और अदम्य साहस की सराहना करते हुए उन्हें नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रणनीतिक संयम से रणनीतिक सक्रियता की ओर से भारत के निर्णायक परिवर्तन का प्रतीक बना। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ वीरभूमि हिमाचल के लिए गर्व का विषय है। राज्यपाल ने लोगों से ऑपरेशन सिंदूर की स्मृतियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराकर सम्मानित करने का आह्वान किया। इस बीच राज्यपाल ने आज लाहौल स्पीति जिले के दौरे के दौरान विश्व प्रसिद्ध अटल टनल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस टनल के बनने के बाद जिले में विकास व पर्यटन को नई पहचान मिली है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज अपने लाहौल दौरे के दौरान विश्व प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग का निरीक्षण किया और इसे आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण बताया। राज्यपाल ने कहा कि

0: मेट्रो टनल बनने के बाद लाहौल स्पीति में विकास और पर्यटन को नई पहचान मिली है। दौरे के दौरान राज्यपाल ने सिसु झील और सिसु वाटरफॉल का भी भ्रमण किया। उन्होंने लाहौल की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करते हुए कहा कि सिसु आज प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो चुका है। राज्यपाल ने लाहौल के आराध्य देवता राजा खेपन मंदिर में दर्शन कर प्रदेश और देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचपीएमसी को आगामी सीजन के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब खरीद के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आयोजित एक बैठक के दौरान निगम की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बागवानों की सुविधा के लिए एचपीएमसी की कार्यप्रणाली के तहत अगले खरीद सीजन से पूरी प्रक्रिया और डेटा का डिजिटलीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सेब उत्पादकों विशेषकर छोटे व सीमांत किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। बैठक में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने शिमला जिला के रामपुर स्थित नर्सिंग कॉलेज के छात्रावास में तपेदिक से संक्रमित 19 छात्राओं के मामले पर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा कि परिसर के हालिया 2 निरीक्षणों के दौरान छात्रावास के प्रबंधन में स्वच्छता और समग्र संस्थागत कामकाज सहित गंभीर कमियां पाई गईं। आयोग ने बताया कि अधिकारियों द्वारा कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप छात्राओं को तपेदिक हो गया। सिरमौर जिला के देवा मानल गांव में 2 सगे भाइयों की खड्ड में डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार 8 वर्षीय आयान और 9 वर्षीय अभिनव घर के पास खड्ड के किनारे खेल रहे थे। तंग रास्ते में एक भाई का पांव फिसलने से वो खड्ड में गिर गया और उसे बचाने के लिए दूसरा भाई भी खड्ड में उतर गया। पानी गहरा होने के कारण दोनों भाई डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों व स्थानीय लोगों ने उन्हें खड्ड से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल ने बेहतरीन कार्य किया है। आज शिमला में उन्होंने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का सर्वे किया है, जिसमें हिमाचल को ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के लिए चयनित किया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हिमाचल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये सम्मान 9 मई को मध्य प्रदेश के सीहोर में दिया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस उपलब्धि में गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए 46 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है, जबकि PMGSY चरण 4 के तहत 250 बस्तियों को जोड़ने के लिए 2247 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं।
2: ये कहते हुए बहुत खुशी है कि केंद्र सरकार जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उन्होंने अलग अलग मापदंडों के तहत एक सर्वे किया अलग अलग राज्यों का। अलग अलग मापदंडों के ऊपर परफॉर्मेंस डेंसिटी ऑफ रोड हमारे ग्रामीण इलाकों के अंदर, उसमें हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से काम सन 2000 से लेकर आज तक और खास करके PMGSY 3 में जो कार्य प्रदेश के अंदर एक तीव्र गति से हुए हैं, उसके फलस्वरूप ये निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश को जो है लोक निर्माण विभाग को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इसके लिए उन्होंने चयनित किया है। इसमें उनको जो है वो ऑनर दिया जाएगा और 9 मई को ये कार्यक्रम जो है वो मध्य प्रदेश में रखा गया है। और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ केंद्र सरकार का, शिवराज जी का।
1: उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 3,500 किलोमीटर सड़क नेटवर्क PMGSY योजना के तहत विकसित हुआ है, जो बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में कुल 31,182 पदों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और कल 8 मई और 11 मई को भी नामांकन भरे जा सकेंगे। पंचायती राज चुनाव चिन्ह पर नहीं होते हैं, लेकिन भाजपा ने अपने समर्थन स्थित जिला परिषद उम्मीदवारों की सूची जारी की है। नामांकन के पहले दिन विभिन्न स्थानों पर उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। शिमला स्थित उपायुक्त कार्यालय में जिला परिषद चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और आजाद उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भरे। जिला परिषद हलोग धामी से भाजपा समर्थित प्रत्याशी कमलेश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया और लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने को अपनी प्राथमिकता बताया।
3: मैं भाजपा समर्थित प्रत्याशी कमलेश शर्मा हलोक धामी वार्ड नंबर 22। मैं इस चुनाव क्षेत्र में एक सेवा भाव से उतर रही हूं और भाजपा ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, उस विश्वास पे मैं खरा उतरने की पूर्ण कोशिश करूंगी। मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं अपने वार्ड की, उनको पूरा किया जाएगा, उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। दूसरे नंबर पर मेरा जो है महिला जो मंडल है हमारे और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन पर मेरा कार्य रहेगा, उन पे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, उनके लिए जो एक स्थायी मार्केट मुहैया करवाना उस पे मैं कार्य करूंगी।
1: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम पेंशनर कल्याण संगठन की सोलन इकाई ने राज्य सरकार पर पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। एचआरटीसी पेंशनर संगठन की सोलन इकाई के महासचिव जगदीश ठाकुर ने बताया कि उन्हें ना तो समय पर पेंशन मिल रही है, ना ही चिकित्सा बिलों का भुगतान हो रहा है और ना ही उनके लंबित भत्ते मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एचआरटीसी पेंशनरों की मांगों को अनसुना कर रही है।
4: हमारे साथ जो सरकार सौतेला व्यवहार करी है, हमें काफी लंबे समय से जो पेंशन समय पर जारी नहीं की जा रही है और अभी हाल ही में हमारे को जो मार्च की पेंशन थी वो 2 मई को जारी की गई। इसी प्रकार जो हर महीने सरकार का हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है और हमें किसी भी प्रकार के ड्यूज से जो वंचित रखा गया है, ना हमें 2016 के स्केल का एरियर, मेडिकल बिलों का भुगतान और 3% डीए जो कि सभी विभाग के कर्मचारी और हमारे एचआरटीसी के कार्यरत कर्मचारियों को मिल चुका है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे 8500 के लगभग जो पेंशन्स है उनको 3% डीए भी अभी तक जारी नहीं किया गया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों ने अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प का किया प्रदर्शन। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने अटल टनल रोहतांग का किया निरीक्षण, कहा टनल के बनने से लाहौल स्पीति जिले में विकास व पर्यटन को मिली नई पहचान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचपीएमसी को आगामी सेब सीजन में सेब खरीद के लिए समुचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बेहतर क्रियान्वयन के लिए हिमाचल को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। और पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू, 8 व 11 मई को भी भरे जाएंगे नामांकन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं।
2: मानो या ना मानो तुम,

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इसे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान गंवाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं।
2: मानो या ना मानो तुम,

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इसे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान गंवाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं।
2: मानो या ना मानो तुम,

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इसे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान कमाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।